0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी के को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश

0: के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ध्वनि तरंगों की लय पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मंगल प्रभात की करते हैं शुरुआत मातृभूमि के नमन से। समूह स्वर में सुनते हैं ये देशगान।

कार्यक्रम वंदना के अंत में सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में ये भजन। फिल्म का नाम है यादगार।

0: महेंद्र कपूर और साथियों के गाए फिल्म यादगार के इस भजन के साथ ही वंदना अब संपन्न हुई। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब करते हैं विचारों का मंथन कार्यक्रम चिंतन में। आज के चिंतन में आलेख गर्जन सिंह वरकड़े का है, वाचक स्वर है दीपक हटवार का।
1: जीवन क्या है, इसे गहराई से जानने का काम साहित्य ने किया है। साहित्य जीवन को देखने की बारीक दृष्टि है। साहित्य में वो सब प्रतिबिंबित होता है, झलकता है, जो जीवन में घटित होता रहता है। जीवन के बारे में अनेक दृष्टियां हो सकती हैं, लेकिन प्रेमचंद की जीवन दृष्टि को हम जानना चाहें तो वे कहते हैं, जीवन केवल जीना, सोना और मर जाना नहीं, वो तो पशुओं का जीवन है। मानव जीवन में भी ये सभी प्रवृत्तियां होती हैं, पर इससे अलग उसमें कुछ और भी होता है। ये कुछ और है क्या? प्रेमचंद कहते हैं, आज हम जो शिक्षित कहलाते हैं तटस्थ होकर अन्याय होते नहीं देख सकते हैं। यही वो कुछ और है जो मनुष्यों को पशुओं से अलग करता है। उनकी दृष्टि में जीवन का मतलब व्यापक सामाजिक जीवन है। साहित्य हमारी सौंदर्य भावना को सजग करने की चेष्टा करता है। मनुष्य मात्र में ये भावना होती है, जिसमें ये भावना प्रबल होती है और जिसमें इसे प्रकट करने का सामर्थ्य होता है, वो साहित्य का उपासक बन जाता है। प्राचीन साहित्य धर्म और ईश्वर, द्रोहियों के प्रति घृणा और उनके अनुयायियों के प्रति श्रद्धा और भक्ति के भावों की सृष्टि करता रहा। नया साहित्य समाज का खून चूसने वालों, रंगे सियारों, हथकंडे बाजों और जनता के अज्ञान से अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों के विरुद्ध उतने ही जोर से आवाज उठा रहा है और अन्याय के हाथों सताए हुओं के प्रति उतने ही जोर से सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। स्पष्ट है, साहित्यकार का काम केवल मनोरंजन करना मात्र नहीं है, वो तो हमारा पथ प्रदर्शक होता है। वो हमारे मनुष्यत्व को जगाता है, हमें सद्भावों का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फैलाता है। हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती है, वही अनुभव और वही चोटें कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वो आज हमारे लिए बेकार है। वो साहित्य कहने का अधिकारी नहीं। कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण।

वैसे साहित्य मनोरंजन भी है, लेकिन ये सस्ता और हल्का मनोरंजन नहीं है, बल्कि साहित्यिक मनोरंजन वो है जिससे हमारी कोमल और पवित्र भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। हमें सत्य, निस्वार्थ सेवा, न्याय आदि देवत्व के जो अंश हैं वे जागृत हों। प्रेमचंद कहते हैं, मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद ही की खोज में पड़ा रहता है। किसी को वो रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आलेख गर्जन सिंह वरकड़े का था, वाचक स्वर था दीपक हटवार का। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर है वाणी जयराम का, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह, श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव-गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहाँ से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत, वन, गांव और ठौर जहाँ ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संदेश संगीत निर्देशन में श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर थे वाणी जयराम के। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब सुनिए हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ ही देर पश्चात यानी सुबह 6:50 पर सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीत। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुबह 7:10 पर। कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट का समय होगा सुबह 7:20। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचारों का समय होगा सुबह 8:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम का लुत्फ आप उठा सकेंगे सुबह 8:15 से। 8:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले समन्वित रूपक। विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:00 से।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे से। 10:05 का समय होगा कार्यक्रम आपकी पसंद का। सुबह 11 बजे से आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। दोपहर 2:10 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचारों का समय होगा दोपहर 2:15। दोपहर 3 बजे आप सुन सकेंगे नया भारत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 3:10 से आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

शाम 5 बजे से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा शाम 5:30 से। शाम 6 बजे का समय होगा कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट का। सुगम संगीत के कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा शाम 6:30 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचारों का समय होगा शाम 7:05 और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 7:10 से। 7:21 का समय होगा हमारे किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल का और प्रायोजित कार्यक्रम

फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं रात 8 बजे से। रात 8:30 का समय होगा कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचारों का समय होगा रात 8:45। रात 9 बजे से आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। स्पॉटलाइट समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:15 से, और रात 9:30 से रात 11 बजे तक आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

श्रोताओं, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब सुनते हैं चंद सदाबहार फिल्मी गीत। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से नगमे के साथ। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है, धुन तैयार की है रवि ने, और फिल्म का नाम है आँखें।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, यादों की बारात फिल्म से। रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत है आरडी बनबन का।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए आशा भोसले के स्वर में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है लोफर।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए कस्मे वादे फिल्म से, स्वर किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों के हैं। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने, संगीत आरडी बर्मन का है।

कसम वादे फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। इंदौर में आज 21 देशों के मंत्री और विशेषज्ञों के साथ ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का होगा आगाज। प्रदेश भर में आज लगेगी नेशनल लोक अदालत। बिजली पानी बिल के सरचार्ज पर 100% माफी समेत कई विवादों के निपटारे का मौका। और एक तरफ आंधी बारिश तो दूसरी ओर चिलचिलाती गर्मी। प्रदेश के 13 जिलों में आज तेज तूफान का अलर्ट। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। सरकार का कहना है कि 95% डिलीवरी अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए की जा रही है।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया।
2: शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्य प्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनि विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि वे दो दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनि विद्यालय भी देखे और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के काम करे।
0: प्रदेश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें बिजली बिल, चलकर, संपत्ति कर के अधिभार पर 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकता है।

0: हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। इस महाकुंभ में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और मीडिया विशेषज्ञ हिन्दी पत्रकारिता के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 के इंडेक्स स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और धात्री माताओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां देने में 95% तक कवरेज हासिल की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस उपलब्धि का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को दिया। उज्जैन के लक्ष्मण बाग परिसर में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इसे मध्य प्रदेश भवन विकास निगम करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करेगा। इसमें प्रशासनिक ब्लॉक, 12 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, 50 सीटर कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई को श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में 2 चीतों को खुले जंगल में रिलीज करेंगे। सोमवार सुबह 8 बजे कुनो नदी के पास चीता रिलीज साइट पर यह कार्यक्रम होगा। इस प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर शीला दाहिमा और एसपी सुधीर अग्रवाल ने कुनो पहुंचकर हेलीपैड, चीता रिलीज साइट और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रदेश में अब तक 9,38,000 किसानों से 56,45,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 10,403 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। सरकार 2585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। भोपाल के सांदीपनी विद्यालय गोविंदपुरा में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले आराध्य पाराशर ने मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तरीय विजेता छात्र शामिल हुए थे। कटनी जिले में सोने के अयस्क और डोलोमाइट के बड़े भंडार मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश की नई माइनिंग कैपिटल घोषित किया है। सलीमनाबाद के इमलिया गांव में करीब 3.35 लाख टन से ज्यादा सोने का अयस्क मिलने का अनुमान है, जो 50 साल की भूवैज्ञानिक खोज का नतीजा है। बड़ेरा और बचरबाड़ा में 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में 3 बड़े डोलोमाइट ब्लॉक भी माइनिंग कॉरपोरेशन को दिए गए हैं। मलेशिया के वन विभाग का 7 सदस्यों का दल कल मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचा। ये दल 3 दिन तक यहां के संरक्षण मॉडल को करीब से समझेगा। पहले दिन खटिया इको सेंटर में वन्यजीव प्रबंधन, बाघ इंसान सह अस्तित्व और आधुनिक वन प्रबंधन पर चर्चा हुई। प्रदेश पुलिस ने बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। प्रदेश के बीच से गुजर रही दो टर्फ लाइन और ऊपरी हिस्से में सक्रिय चक्रवाती हवाओं के चलते राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। कल 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया है। आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 142 रन बनाए, जिसके जवाब में केकेआर ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गुना आएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंदसौर में एनसीसी कैडेट्स को टीबी खत्म करने के अभियान में अपनी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। आगरमालवा जिले में नेशनल लोक अदालत के लिए 10 न्यायिक खंडपीठे बनाए गए हैं। झाबुआ में गर्मी के चलते पेयजल समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। सतना में नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 के खाली पार्षद पद पर

उपचुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। डिंडौरी में कलेक्टर ने डैम घाट पर नाविकों की बैठक लेकर उन्हें सुरक्षा के जरूरी निर्देश दिए। धार में नगर पालिका परिसर में दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। गुना में मिलावटखोरी रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की लगातार जांच और सैंपलिंग की जा रही है। सागर में मकान गणना का काम धीमा पड़ने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 5 जनगणना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रतलाम में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम ने अरिहंत परिसर और ऑफिसर कॉलोनी के नालों की सफाई कराई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

खूबसूरत सी इस प्यारी सी सुबह में कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट के इस ताज़ा तरीन अंक को लेकर आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त संगीता। कार्यक्रम में सबसे पहले स्वीकार है हमारा नमस्कार, शुभ प्रभात और गुड मॉर्निंग। श्रोता साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे, क्योंकि छुट्टियों के दिन जो चल रहे हैं और साथ ही इसमें मौसम भी आपका साथ दे रहा है। कभी गर्मी होती है तो कभी कभी आंधियों के साथ बारिश भी चलती है। जैसे आज सुबह से ही मौसम बना हुआ है बारिश का, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन साथियों, ये हाल जो है ये शहर के या हमारे देश के या हमारे राज्य के हर हिस्से का नहीं है। कुछ जगह तो मौसम की वजह से ठंडक है, पर कई जगह ऐसे हैं जो आज भी गर्मियों से तप रहे हैं। जी हाँ साथियों, मौसम चल रहा है गर्मियों का और कई जगह गर्मियाँ अपने चरम पर भी हैं। और मौसम है क्योंकि गर्मियों का, तो गर्मी का मौसम कुछ दिन रहेगा ही, आखिर साल में एक बार जो आती हैं गर्मियाँ। मित्रों, हमारे यहाँ हर मौसम मेहमान की तरह आता है, साल में एक बार रुकता है और फिर चला जाता है। लेकिन मित्रों, मेहमान की मेहमान नवाजी होते देख कितना समय हो गया है। गर्मियों में मोगरे की कलियों से भरे बागीचे, आम के पेड़ों पर कूकती कोयलें, खस के शरबतों की महफिलें, अचार के मसालों की सुगंध, सत्तू के सकोरे, मीठे दही के कुल्हड़, तरबूजों की रसीली मिठास, आम की बहार, अचार की मुंह बंधी बर्निया, करारी कलफ लगी सूती धोतियां, कढ़े हुए दुपट्टे, घरों की खिड़कियों पर लगी भीगी खस की कतारें, अब कहीं देखी हैं आपने? ना गर्मियों का उत्सव है ना स्वागत। हम मौसमों से बचना कैसे सीख गए साथियों? हम तो हर मौसम के बदलाव को माथे से लगाते आए थे। खान पान, पहनावा, रहन सहन सब में तब्दीली करते चलते थे। सुबह से ही रसोइयां महकने लगती थी, ताज़ी लौकी कद्दू बगीचे से कटकर आ जाते थे। सुबह 11 बजे तक सड़कें सूनी हो जाती थी, छोटी सी मचिया पर हाथ पंखा लेकर बतियाते महिलाओं की दोपहरियां बीत जाती थी। शाम को बाल्टी में भिगोए ठंडे मीठे आमों का स्वाद लिया जाता था, चुनमुन सी घंटी बजाता कुल्फी वाला आता। रात को छत पर खाटे लगती और देर रात तक बतियाते ददिहाली ननिहाली बच्चों की फौजें होती। छुट्टियों और गर्मियों का एक अद्भुत मेल होता था और उन सब की हम यादें बटोरते थे। लेकिन साथियों, ये किस्से शायद अब देश के कुछ ही हिस्सों में बचे हों, और जगह के गर्मियों के अपने स्वाद और स्वागत होते होंगे। लेकिन मित्रों, जिनका स्वागत ही ना किया जाए वो मेहमान मन से कैसा रहेगा? एक ऊब उकताहट सी छाई रहेगी और रहती भी है। हम धरती से उखड़ गए, आसमान से कट गए, पवन से सिमट गए तो कुम्हला जाएंगे। सब कुछ सदाबहार बनाने की क्यों ठान ली है हमने? ऐसे तो जीवन में एक रिश्ता आ जाएगी। चलिए साथियों, फिजा बदलें, जायके बदलें,

मन करवटे ले तो उमंग बदले। चलिए दोस्तों, मौसम के उत्सव को किसी रंगीन चक्री की तरह लेकर दौड़ पड़ते हैं वक्त की दिशा में। उल्लास संग उमड़ेगा और मौसम का रंग जमेगा।

श्रोता साथियों, जीवन में हार जीत तो लगी रहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हमेशा जीत का ही स्वाद चखें और

ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप हर बार आपको हार ही मिले। लेकिन ये बात बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और अगर वे हार जाते हैं तो टूट जाते हैं। उनको लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया और निराशा और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन साथियों, ये सोच पूरी तरह से गलत है। अगर आपको जीवन में कभी भी हार का सामना करना पड़े तो उससे निराश ना होकर उससे सबक लें, क्योंकि कोई भी हार जीत की पहली निशानी भी होती है। और यही कहता है हमारा आज का विचार भी। साथियों, हमारा आज का विचार कहता है, हार वो सबक है जो आपको और बेहतर होने का मौका देगी। जी हाँ साथियों, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर सच है कि हर बार हमारी निराश, हमारी जो असफलता है, हमारी हार है, वो हमें कुछ ना कुछ सबक देकर जाती है। और हार के बाद ही हमें ये अवसर मिलता है कि हमें कैसे खुद को सुधारना है, हमने जो गलतियाँ की हैं उनको हमें कैसे सुधारना है, अपने आप को और कैसे निखारना है। और जीवन में जो ये सबक सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि मित्रों, जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद ही जीत है।

0: माँ, मैंने प्रदेश की नंबर वन वैनगंगा आईटीआई में एडमिशन ले लिया है।
1: वैनगंगा आईटीआई ही क्यों बेटा?
0: माँ, वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ का रिजल्ट, नौकरी तो पक्की समझो। इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर भी तो वैनगंगा आईटीआई से ही है। साथ ही विशाल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज, सुनिश्चित छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, वैनगंगा आईटीआई।
1: प्रवेश प्रारंभ वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई कारणों से जाना जाता है। आज के दिन कई ऐसी घटनाएं घटीं जो हमेशा के लिए दर्ज हो गई इतिहास के पन्नों पर। चलिए साथियों, चलते हैं आज की तारीख से जुड़े इतिहास की ओर। तो आज है 9 मई। 9 मई 1947 को विश्व ने अपना पहला ऋण फ्रांस को दिया था। विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण फ्रांस को दिया था। सन 1955 में पश्चिमी जर्मनी नेटो का हिस्सा बना था आज ही की तारीख में। 9 मई 1950 को शुमान घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की नींव रखी, जो यूरोपीय संघ का पूर्ववर्ती था। इस दिन को यूरोप दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो यूरोपीय शांति और एकता का प्रतीक है। सन 1869 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंतर महाद्वीपीय रेलमार्ग यूटा क्षेत्र में प्रोमोंटरी समिट में पूरी हुई, जो रेल द्वारा देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सन 2010 में भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए वर्ष 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। आइए श्रोताओं, अब जानते हैं उन हस्तियों के बारे में जो आज की तारीख में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। सन 1999 में निधन हुआ कर्मशी जेठाभाई सोमैया का, जो एक भारतीय शिक्षाविद थे। 9 मई 1959 में राष्ट्रवादी हिंदी सेवी भवानी दयाल सन्यासी इस दुनिया को अलविदा कह गए। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोरगे सन 1986 में इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। और साथियों, 9 मई 1998 में प्रसिद्ध भारतीय गज़ल गायक और अभिनेता तलत महमूद ने इस दुनिया को अलविदा कहा। श्रोता साथियों, तलत महमूद एक महान भारतीय पार्श्व गायक और अभिनेता थे, जिन्हें उनकी रूमानी आवाज़ के लिए गज़ल गायक और गज़ल का राजा कहा जाता था। लखनऊ में जन्मे तलत ने हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए। उन्हें उनकी आवाज़ से

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आइए श्रोता साथियों, अब जानते हैं उन हस्तियों के बारे में जो आज की तारीख में जन्मी। 9 मई 1935 को जन्म हुआ प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री स्नेहमयी चौधरी का। श्रोताओं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ सन 1866 में। सन 1930 में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर, आज ही की तारीख में। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारत की महानतम हस्तियों में से एक माने जाते हैं। वे एक कवि, लेखक, विचारक, दार्शनिक, गीतकार और चित्रकार थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार में और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्व को उनकी सबसे बड़ी देन शांति, अहिंसा और अंतर्राष्ट्रीयवाद की अवधारणा थी। जी हाँ साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कविगुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता था। और ये हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। उनकी बहुत सारी कृतियाँ थी, जिनमें नैवेद्य,

श्रोता साथियों, हमारे जो युवा श्रोता साथी हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपना करियर बनाएं, एक अच्छा रोज़गार हासिल करें, क्योंकि साथियों एक अच्छा रोज़गार हासिल करना हमारे हर युवा श्रोता साथी की तमन्ना होती है। तो हमारे ऐसे ही युवा श्रोता साथियों के लिए हम लेकर आए हैं आज की ये रोज़गार सूचना। संचालनालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें कुल रिक्त पदों की संख्या है 1200। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख है 21 मई 2026। पदों से संबंधित शैक्षणिक संयोगता और बाकी सभी जानकारियों से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमारे श्रोता साथी वेबसाइट www.esb.mp.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: नमस्कार बालाघाट। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें मिला प्रदीप बिसेन और मनोज जैन का। कार्यक्रम में प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। और आज कार्यक्रम को लेकर आपके साथ थी मैं, आपकी रेडियो दोस्त संगीता। अब दें हमें और हमारी पूरी टीम को अनुमति कार्यक्रम समाप्त करने की, और स्वीकारें हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार बालाघाट।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकाय योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

0: प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी

0: नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है।

0: नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब लुत्फ उठाइए सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सोनू निगम के गाए चंद गैर फिल्मी गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए चंद गैर फिल्मी गीत।

0: सोनू निगम के गाए इस गैर फिल्मी गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले समन्वित रूपक।
1: बच्चे जो है वो बड़ों को भी घूमना पसंद होता है, बच्चों को भी घूमना पसंद होता है, और घूमने से नई नई जगहों को देखने से, नए नए लोगों से मिलने से जो है वो हमारा दिल भी खुश होता है। और जो हमारा जब दिल खुश होता है, हम प्रसन्न होते हैं, तो हमारी जो है वो खुशियाँ जो हैं वो डबल हो जाती हैं। तो क्यों ना इन गर्मियों में नई नई जगह घूमिया जाए और बच्चों को जो है वो लेकर नई नई जगहों पर लेकर जाया जाए और उन्हें नई नई जगहों की जानकारी भी दी जाए। तो इससे बच्चों की जानकारियाँ भी बढ़ेंगी और उन्हें मज़ा भी आएगा, और इसके साथ साथ जो बड़े हैं वो भी जो हैं वो घूमने का पूरा आनंद ले सकते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी.
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
6: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टी जो है वो वाकई कितनी जो है उन छुट्टियों का इंतज़ार रहता है. गर्मियों की छुट्टियों का जो है वो छात्रों के लिए जो है वो साल का सबसे जो है वो इंतज़ार वाला वक्त होता है. ये सुकून से छुट्टी का समय है और आराम करने और तरोताज़ा होने का एक जो है वो अवसर कह सकते हैं उसको है. गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो है वो परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है. पहाड़ों की और कहीं भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ की यात्राएं की जा सकती हैं. तो कह सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो सभी के लिए सबसे इंतज़ार वाला वक्त होता है.

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी भोपाल के उर्दू नशरियात के तहत समाज फरमाएं सोमवार सुबह 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम आईना।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रोचक जानकारियों का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य।

0: स्थिर दर्पण प्रति सोमवार दोपहर 1 बजे।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, जब भी हम कहीं सफर पर निकलते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो हमें खुशी होती है कि हम सफर किस चीज से कर रहे हैं। गाड़ियों से सफर, प्लेन से सफर बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो सफर का आनंद है वो आता है ट्रेन से। जी हाँ, बच्चों को तो अक्सर जो है वो रेल का सफर बहुत भाता है। तो हमने भी बचपन में काफ़ी रेल के सफ़र किए हैं और आपने भी किए होंगे, तो वाकई आता है ना आनंद रेल के सफ़र में। तो बच्चे जो हैं वो हमेशा कहीं जाने की जब ज़िद करते हैं या कहीं हम जाते हैं घूमने, तो सबसे पहले उनका यही रहता है कि किस चीज़ से जा रहे हैं हम। तो भाई वो ये बोलते हैं बच्चे कि हमें तो रेलगाड़ी से यानी ट्रेन से ही जाना है, सफ़र करना है। तो वाकई श्रोताओं, ट्रेन का सफ़र जो है वो सभी को बहुत अच्छा लगता है।

जी हाँ श्रोताओं, ट्रेन से सफ़र करने का आनंद ही कुछ और होता है और बच्चे तो चाहते ही हैं कि घूमने फिरने कब जाएं। इस दौरान बच्चों को हमें जो है वो ऐसी जगहों पर ले जाना चाहिए जहां उनका जो है वो दिमागी विकास भी हो, जैसे कि

कुछ ऐसी हमारी धरोहरें हैं हमारे देश की जो हम बच्चों को दिखा सकते हैं, उन्हें उसके बारे में बता सकते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बच्चों को जो है वो उनको उनको दिखा के जो है वो चीज़ें वो सीख सकते हैं, और अपने जो घर के जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके यहाँ भी ले जाकर बच्चों को जो है उनसे मिलवा सकते हैं, उनकी जो बातें हैं वो बच्चे सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं, और आपस में जो है वो प्यार से आगे रहना भी सीखते हैं। तो इस तरह से जो है वो गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो बच्चों को हम

बातें हैं वो बच्चे सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं और आपस में जो है वो प्यार से आगे रहना भी सीखते हैं। तो इस तरह से जो है वो गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो बच्चों को हम ले जाके घुमा सकते हैं और बच्चे अपनी छुट्टियां इस तरह से बिता सकते हैं।

इतना नहीं

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टी जो है वो कैसे बिताई जाए। तो गर्मी का जो मौसम है वो नई जगहों पर सैर करने का होता है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बच्चों की छुट्टियां हुई होती हैं या आउटडोर खेलों में बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। गर्मी का मौसम जो है वो आम, ठंडे पेय और आइसक्रीम का आनंद लेने का भी कह सकते हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। लेकिन अभी एक छोटे से अंतराल के बाद ये कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि अभी वक्त है इस घंटे की खास खबरों का। तो अभी फिलहाल हम सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।
4: पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले दो दिनों में 97 लाख से ज्यादा सिलेंडर की डिलीवरी की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। डॉ. यादव ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुने गए शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद के लिए बधाई दी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास की संयुक्त पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर भी बना हुआ है। रतलाम में पारा 43.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि उज्जैन में 42.4 और इंदौर भोपाल में 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

0: आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। फिनलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और प्रदेश पुलिस ने बीते एक हफ्ते में अलग अलग जिलों में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 83 लाख रूपये से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कार्यक्रम। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

दिल में उतरती आवाज अरिजीत सिंह की, इनकी गायकी का अंदाज भी अलग है। गदर 2 फिल्म का गाना आपने सुना, सईद कादरी के बोल थे, मिथुन का संगीत, और अब एक छोटा सा अंतराल।

ये छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम फिर से हाजिर हो गए चित्रलोक कार्यक्रम में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, आज है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। आपने गोरा, चूखेरबाली, घरे बाहर जैसे कई उपन्यास लिखे। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है साथियों जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास, नाटक या गीत। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। साल 1913 में उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।

0: परिणीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थीं, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का मीठा संगीत और इसमें बात थी पीयू बोले, बहुत ही प्यारा गाना था ये। साथियों, ये पक्षी, इनकी परवाज, इनकी चहचहाहट, इनका सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। सच मानिए, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारिए ना, जिंदगी में चारों ओर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब एक संदेश की ओर बढ़ जाते हैं।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

जावेद अली की आवाज़, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक मखमली आवाज की।
1: बेचैन नजर

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई।

इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार कर

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। सुबह के 10 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीप।

0: passing. सिंगरौली में अब बच्चे सिर्फ किताबों में ही आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। कलेक्टर गौरव बैनल की पहल पर उत्कृष्ट विद्यालय बैढ़न में 10 इंच का प्रोफेशनल टेलीस्कोप लगाया गया है। इस दूरबीन के जरिए छात्र अब चांद के गड्ढों, शनि ग्रह के छल्लों और गहरे आकाशीय पिंडों को करीब से देख सकेंगे और समझ सकेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। वहीं विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी सिंगरौली लगातार आगे बढ़ रहा है। खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के निर्देशन में खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तय लक्ष्य के मुकाबले बड़ी राजस्व वसूली की है। जिले ने करीब 4,833 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने 4,681 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा को लेकर भी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। वन मंडल जिला यूनियन सिंगरौली ने वर्ष 2026 के तेंदुपत्ता संग्रहण की सभी तैयारियां पूरी करनी हैं। इस साल जिले के लिए 1,77,000 से ज्यादा मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 400 रुपये प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। इधर जिले की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सिंगरौली को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है। वर्ष 2020 के आईपीएस अधिकारी शियास के एम ने जिले के एसपी का पद संभाल लिया है। इससे पहले वे बालाघाट के हॉक फोर्स में पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर जोर दिया। नई पुलिस टीम के सक्रिय होते ही अपराधियों पर कार्रवाई भी तेज हो गई है। बरगवां थाना पुलिस ने हाल ही में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों ने एक युवक के साथ मारपीट, नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पर्स लूट लिया था। वहीं प्रशासन अवैध खनन और भंडारण पर भी लगातार सख्ती बरत रहा है। खनिज विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम मझौला में कार्रवाई करते हुए निजी जमीन पर अवैध रूप से भंडारित करीब 174 घन मीटर लावारिस रेत जब्त की है। इधर सिंगरौली को रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अब सिंगरौली सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से रेल सेवा के जरिए जुड़ गया है। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन से साप्ताहिक धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक क्षेत्र में भी गतिविधियां लगातार जारी हैं। एनटीपीसी विंध्याचल ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। परियोजना और टाउनशिप के करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रमिक अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुए। अलग अलग स्थानों पर सेफ्टी टॉक और वेलनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इसी क्रम में एनटीपीसी विंध्याचल में फायर सर्विस वीक भी मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक बॉम्बे डॉकयार्ड अग्निकांड में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को याद करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ी पहल की गई है। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने वृहद वृक्षारोपण के लिए एमपीआरवीवीएन के साथ एमओयू किया है। एनसीएल ने वर्ष 2026-27 में प्रदेश के खदान क्षेत्रों की 208 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर करीब 4,70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब बात जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने की। जिले में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी है। ये शिविर 4 जून 2026 तक चलेंगे। जिले के अलग अलग विकासखंडों और जिला मुख्यालय में फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैढ़न के राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट शिविर लगाए गए हैं जबकि खो खो का प्रशिक्षण काइट राइज पब्लिक स्कूल और बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कन्या महाविद्यालय बैढ़न में दिया जा रहा है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी जिंदगी को बदलने का काम किया है। 71 वर्षीय लालमन को आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड मिला है जिससे उन्हें अब हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं छोटे व्यापारी शिव नारायण को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण मिला है जिससे वे अपना काम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह रीता कुशवाहा ने भी पीएम स्वनिधि की मदद से अपनी बंद दुकान को फिर से शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला किसान सत्य कुमारी जायसवाल के नेतृत्व में महिलाएं मिलेट उत्पादन और मार्केटिंग से आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले जिले की चिट्ठी। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद।

हमारे सभी सुधी श्रोता साथियों का स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में। तो आपकी पसंद कार्यक्रम शुरुआत करते हैं श्रोता साथियों, और जानते हैं कि हमारे किन साथियों ने किन किन गीतों की फरमाइश की है। तो आइए श्रोता साथियों, शुरू करते हैं आज के फरमाइशी गीतों का सिलसिला। सबसे पहले कार्यक्रम का जो पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, उसे हमने लिया है फिल्म कयामत से कयामत तक से। स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक के हैं, और इस खूबसूरत से गीत को सुनने की फरमाइश हमें जिन्होंने की है उनके नाम भी सुन लीजिए। वार्ड नंबर 2 बालाघाट से ज्योति, रोशनी, किरण, रश्मि, दीपक, धर्मेंद्र, बेबी, शिवानी और इनके साथियों ने साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है। बैहर चौकी बालाघाट से अफशा, उज़मा, आलिया और उनके बहुत सारे साथियों ने। तो इन सभी की मिलीजुली पसंद में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा कयामत से कयामत फिल्म से।

निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

श्रोताओं, अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म दिल तो पागल है से। स्वर लता मंगेशकर और उदित नारायण के थे और इस गीत की फरमाइश हमें की थी बूढ़ी बालाघाट से देवेंद्र, कार्तिक, छोटू, आशीष, वंदना और उनके ढेर सारे साथियों ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला नगमा आपको सुनवाते हैं, जिसे हमने लिया है बरसात फिल्म से, स्वर कुमार सानू और अलका याग्निक के हैं और इस गीत की फरमाइश हमें की है भरवेली बालाघाट से पुरुषोत्तम, रानू, वंदु, संतोष, शरद ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है लालबर्रा बालाघाट से सुभाष, विशाल, कैलाश, गुड्डू, मीना और इनके बहुत सारे साथियों ने। तो इन सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं बरसात फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और कार्यक्रम आपकी पसंद में हमारे फरमाइशी गीत में के क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति, करसन सारगथिया और साथियों के स्वर में ये खूबसूरत से गीत। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट से श्रीवर्धन, आकांक्षा और संदीप ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है लांजी बालाघाट से जितेंद्र कुमार, सेवक राम, कृष्णा, दीवक, दीपक, मासूम, मुस्कान और उनके ढेर सारे साथियों ने। तो आइए इन सभी की मिलीजुली पसंद पर हम सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम का ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला नगमा सुनिए तुम्बिन फिल्म से, स्वर सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल के हैं। और इस खूबसूरत से गीत को सुनना चाहा है रामपायली बालाघाट से अर्चना, नरेश, बिट्टू, आरती, पूजा, मनोज, रविसुदन, मधुसुदन, संजू और विजय ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है रजेगांव से प्रवीण, पवन, निशांत, कुलदीप, अशोक, भोजराज, धनंजय, कल्पना, गौरी और प्रगति और प्रवीण ने। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश लामता से भी हमें मिली है। लामता से इस गीत को सुनना चाहा है कमलेश, अखिलेश, मंजू, धर्मेंद्र, दुर्गेश, शिव कुमार, श्याम सिंह, गणराज, मानसिंह और उनके ढेर सारे साथियों ने। तो आइए इन सभी की मिलीजुली पसंद पर सुनते हैं तुम बिन फिल्म का ये गीत।

आइए श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीते के कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला नगमा सुनते हैं सिर्फ तुम फिल्म से। स्वर कुमार सानू और अलका याग्निक के हैं और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कोसमी बालाघाट से अखिलेश, रोशन, राही और अरुण और उनके साथियों ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है कटंगी बालाघाट से मौली, गीता, अजय, सार्थक, हेमलता, श्रेया, रमेश, महेश, ताराचंद और उनके साथियों ने। और इस गीत को ही सुनना चाहा है मोतीनगर बालाघाट से अशोक, जहीर, राधेश्याम, संजू, विमल, योगेश, राजेश, लोकेश और उनके ढेर सारे साथियों ने। तो आइए इन सभी की मिलीजुली पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म दाग द फायर से। स्वर उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और साथियों के हैं। और इस खूबसूरत से गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम कायदी बालाघाट से लता, किशनलाल, केशव, प्रियंका, कन्हैया, भार्गवी, वेदिका और उनके साथियों ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है बिरसुला बालाघाट से पप्पू, मुन्नी, गुड्डू, अनूप, राधा, विनीत, प्रशांत, पुष्पा और उनके साथियों ने। और इसी गीत को कंजई बालाघाट से सुनना चाहा है प्रताप, मोनू, अनुराधा, शानू, पिंटू, प्रतिभा

बबलू, रानी, श्यामा और उनके साथियों ने, और इसी गीत को वारासिवनी बालाघाट से सुनना चाहा है राजेंद्र, शेखर, आरती, नेहा, प्रियांशी, इशिता, हिमांशी, रियांशी और रजनी ने। तो इन सभी की मिलीजुली पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म दाग दी फायर का ये गीत।

बबलू, रानी, श्यामा और उनके साथियों ने, और इसी गीत को वारासिवनी बालाघाट से सुनना चाहा है राजेंद्र, शेखर, आरती, नेहा, प्रियांशी, इशिता, हिमांशी, रियांशी और रजनी ने। तो इन सभी की मिलीजुली पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म दाग दी फायर का ये गीत।

उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दाग द फायर का गीत। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। हमारे जो भी श्रोता साथी हैं जो अपनी फरमाइशी फिल्मी गीतों के गीत सुनना चाहते हैं, वे हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं और अपनी पसंद के गाने जो हैं वो आप सुन सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके खतों का इंतज़ार। और अब समेटते हैं आज के कार्यक्रम को और चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम आपकी पसंद से नमस्कार स्वीकारें हमारा यानी अपनी रेडियो दोस्त संगीता का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मेरठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा गुलाम है ये, आवाज भूपिंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना, कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज़ भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज़ नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूनी ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहाँ तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा, कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर जो कि 1974 की फिल्म है उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहाँ तक गीत की बात है लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है, जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब।

0: ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की। ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में आप सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी देर में।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त, वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है, पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है, वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब? मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी, तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनामी नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का

पति का जहाँ व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है, तर्क और बुद्धि जहाँ हार जाते हैं, वहाँ स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मोह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुँचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आजाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक, हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था। आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिलें तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर। हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और यह आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है, इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है, बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक। संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों

असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है। और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है, बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: पनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या,
0: हे रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले ली।

जी तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें? बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तगे से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए सुरीले आवाज के लिए मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

0: हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबू लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीर बाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया आप कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला, मैं कंफ्यूज।

में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबू लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक, आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटों भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि छुन छुन करती आई चिड़िया, जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहाँ मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजने रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है, जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी। ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी, जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों? लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

0: साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा। और हमें शिक्षक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब।
0: राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा,
2: शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। बंगाल में सत्ता का नया सूर्योदय हुआ है और यहाँ पर जंगल राज का अंत हुआ है, गुंडागिर्दी का अंत हुआ है। निश्चित रूप से इस अवसर पर बंगाल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। कृपया से दोबारा सुन लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री

0: भी जाएंगे, जहां वे सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर का दौरा भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने संसदीय क्षेत्र गुना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यह ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। देश भर में आज इस साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। इसमें बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के अधिभार और 100% तक की छूट दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा रहा है।
1: अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: वहीं रायसेन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने के निर्देशन में आयोजित इस अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद और चेक बाउंस जैसे राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। आज के लिए 13 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। आगरमालवा जिला जेल एवं वृद्ध आश्रम में कल आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में वृद्धजनों को स्वास्थ्य, पेंशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। जबलपुर में जिला अस्पताल विक्टोरिया और सरकारी संस्था पार्थ के संयुक्त तत्वावधान में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया कल 10 मई को नीमच में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করি।

0: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रत

0: जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश

0: में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितनी

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आप

आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की ज़रूरत है।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। विविध भारती
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया। इन्होंने ये खत लिखा है।

कोला महाराष्ट्र से, आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है डाक।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
4: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपये भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
4: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाड़े लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहाँ आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्ट मास्टर साहब, ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई श्रृंगारम, क्या हाल चाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूं तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूं, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाऊं?
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई श्रृंगारम? कहो कुछ काम।

0: बना।
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा।
0: अरे
1: हाँ
0: भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है। अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: हाँ
1: हाँ
0: श्रृंगारम, श्रृंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो। अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है। अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों? कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो
0: सुनी सुनाई कह रहा हूं। तुम जरा बात करके देखो, अब पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है। अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
2: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने।
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
2: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूं। अच्छा कोई मनी ऑर्डर
2: है क्यों नहीं।
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
2: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहां मैं दस्तखत कर देता हूं। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
2: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूं मैं। ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
2: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूं।
1: सुनिए सुनिए सुनिए तो।
2: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे। उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
2: वरना क्या होगा।
3: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं। तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
2: सिंगारम ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
3: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहां। देखना ये सिंगारम

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।

0: बेटा मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
1: हाँ लिखा है, प्रिय माताजी प्रणाम।
0: अरे तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह भगवान की कैसी लीला है। अच्छा आगे पढ़ो बेटा।
1: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
0: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
1: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
0: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
1: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
0: बेटा ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
1: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
0: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती।
1: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
0: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
1: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
0: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
0: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
1: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम।
0: अरे अरे अरे अरे।

0: नौबत यहां तक पहुंच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे, वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: श्रृंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू तो क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे, मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारा

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगा।

0: सूत्र बांध सकोगे।
1: अच्छा ये बात है।
0: छोड़ दे, छोड़ दे।
2: बदमाश लज्जा दे बन गया।

0: सूत्र बांध सकूं।
1: अच्छा ये बात है।
0: छोड़ मैं अभी छोड़
2: जहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
2: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों हाथ फेर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
1: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूं, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा धम का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब ओह पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूं, अपनी मां से मिलना चाहता हूं, उससे बातें करता हूं तो लगता है जैसे अपनी मां के पास बैठा हूं। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी
4: कौन? कंद स्वामी आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
5: माँ जी आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
4: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर

0: खड़े हो, अंदर आओ ना।
1: है ये खांसी? आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
1: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
0: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
1: मैं लाता हूँ। दवाई?
0: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
1: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
0: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
1: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
0: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुँच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
2: क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया
2: प्रमिला जी। सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
3: जी,
2: तो हम तब से बात शुरू करें
3: जी
2: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
3: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
2: जी,
3: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
2: हाँ।
3: और फिर

0: ऐसा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे,
1: जी
0: ये मेरा
1: जी
0: नेचर नहीं था।
1: हाँ
0: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसे नहीं बनने वाली।
1: हाँ हाँ
0: तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं
1: जी जी
0: उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा
1: जी
0: राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह
0: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे, तो
1: हाँ
0: एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज़्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए,
1: हाँ
0: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम,
1: जी
0: क्योंकि पुराने गाने ज़्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह।
0: जी,
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी दादी अपना?
0: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
1: जी
0: जो दिन गुड़ी पड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पड़वा के
1: बिल्कुल
0: दिन,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है।
0: जी जी
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
0: मुहूर्त माना, तो
1: क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे से
1: हाँ
0: दिन, उनमें पड़वा बहुत अहमियत रखता है,
1: जी
0: गुड़ी
1: जी
0: पड़वा।
1: क्या बात है।
0: जी
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: थी।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्ना दा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी
0: मन्ना दा
1: जी
0: के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा से मुझे याद है। छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
1: जी
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तुम तो मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ
1: ओह
0: जरूर गाओगी
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया
1: वाह
0: उससे
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: लिस्ट
1: आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ
0: हाँ
1: आपने
0: जी
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: अब किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है।
0: राइट
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या बात
0: आई
1: है।
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना
1: गायिकाओं ने अलग
0: है।
1: अलग
0: हाँ
1: मौके पे इसे
0: ऐसे मैं
1: गाया है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन
1: जरूर।
0: कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं,
0: जी जी
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई,
0: अच्छा
1: मुंबई,
0: अच्छा मुंबई में ही।
1: गिरगांव में,
0: गिरगांव,
1: गिरगांव में हमारा रहना
0: जो
1: भी वहां
0: खास
1: था।
0: मुंबई की
1: सब
0: जैसे कहा
1: चाल
0: जाता।
1: थे सब
0: जी
1: ऐसे,
0: जी जी जी
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ हाँ
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना,
0: मिलकर
1: सब
0: के सब
1: अतिथि
0: काम
1: सब
0: किया करते
1: मिलकर
0: थे।
1: काम करते थे,
0: वाह, हाँ
1: बहुत मजा आता था। लेकिन पूरा
0: हाँ
1: एक चाल कुटुंब जैसा था,
0: जी
1: और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और
0: जी
1: सब
0: जी
1: लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में 4 आने की चाय कभी नहीं पी जाके,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: हाँ
1: घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा
1: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
0: जी जी
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
0: हाँ
1: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
0: अच्छा
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
0: अच्छा
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
0: जी
1: और
0: जी
1: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे,
0: ओ
1: अगर दादर में क्लास होता
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
0: अच्छा
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह
1: पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
0: जी
1: वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
0: हाँ
1: दिल्ली में,
0: हाँ
1: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा,
1: संगीत शारदा,
0: जी,
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
0: ओ
1: जी मेरी
0: अच्छा
1: आवाज़ जरा भारी थी, जाड़ी थी,
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: पुरुष के गायक के लायक थी, और
0: अच्छा
1: हाइट भी अच्छी थी,
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी जी जी
1: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
0: हाँ,
1: स्कूल
0: चूंकि ये महिला
1: के
0: विश्वविद्यालय है
1: महिला विश्व
0: तो
1: नहीं,
0: सारे,
1: वो स्कूल की बात कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
0: अच्छा
1: तो वो हमने उधर किया
0: ओहो
1: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
0: हाँ
1: दिल्ली गई यूथ
0: क्या बात,
1: फेस्टिवल के,
0: अच्छा अच्छा
1: बाकी
0: अच्छा
1: फ्रेंड्स वगैरह थे
0: हाँ
1: साथ,
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा

0: वाह वाह, क्या
1: जितना
0: बात है।
1: लिया था।
0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती थी, पुरुष लोग
0: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी।
1: हाँ जी।
0: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है।
0: हाँ।
1: और 58 को शादी हो गई 16 साल की।
0: हाँ।
1: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
0: हाँ।
1: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
0: वो
1: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
0: हाँ।
1: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है।
0: हाँ।
1: कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
0: वाह।
1: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या? हमने चलेगी,
0: दौड़ेगी,
1: जाऊंगी, कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
0: क्या बात।
1: और दो बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
0: हाँ हाँ।
1: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है,
0: जी जी,
1: उनका वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछ, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके।
0: अच्छा।
1: गाने ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
1: मराठी में गाने थे।
0: जी।

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी,
1: जी
0: फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: पहले
0: इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ गई?
1: वशिष्ठ तरस साहब के साथ गए, फिर
0: हाँ
1: उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों
0: जी
1: के लिए,
0: जी
1: तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी,
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, वो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके,
0: अच्छा
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरियबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
0: अच्छा
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद

0: उनकी एंट्री थी
1: जी
0: तो
1: जी
0: स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते
1: अच्छा
0: थे तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
1: हाँ
0: किया
1: हाँ
0: उनको,
1: जी जी
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी जी
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
1: जी
0: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
1: हाँ
0: छुट गए फिर
1: हाँ
0: मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कहा कि अपने तीन चार गाने गा के ये
1: हाँ
0: लोगों सामने से सुनते बैठू,
1: हाँ
0: बहुत ही भाग्य था
1: क्या
0: मेरा
1: बात
0: इस
1: है।
0: बारे। रफी
1: पर
0: साहब को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
0: डुएट नहीं
1: नहीं
0: गाया
1: गाया? अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
0: जरूर
1: सुने तो कौन सा
0: जरूर
1: होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले दूसरों
0: मतलब
1: के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों का टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी

0: और ये जिनको मालूम नहीं कि
1: हाँ
0: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां
1: जी
0: हैं, तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
1: अच्छा
0: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
1: हाँ
0: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
1: जी
0: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
1: अच्छा
0: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
1: जी
0: प्रोग्राम
1: जी
0: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
1: अच्छा
0: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना में गाओ ना साथ में, मेरी
1: अच्छा
0: सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
1: ओहो
0: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है,
1: क्या बात है,
0: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
1: सोशल मीडिया
0: तो
1: पर,
0: सोशल मीडिया पे,
1: ओहो हो
0: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
1: क्या
0: हूँ।
1: बात है।
0: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
1: हाँ
0: वो तुम्हारा करके गाती हो। वो
1: हाँ
0: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
1: जी
0: पहले
1: जी
0: गाने,
1: जी
0: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
1: हाँ हाँ
0: जाती है।
1: हाँ
0: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
1: बराबर
0: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
1: जी
0: क्लासिकल
1: जी
0: म्यूजिक का।
1: हाँ
0: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
1: जी
0: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
1: ओहो
0: हारमोनियम पे सिर्फ
1: क्या बात है,
0: भेजे।
1: अच्छा
0: कभी कभी
1: अच्छा
0: अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
1: जी
0: साथ
1: जी
0: गाए,
1: जी
0: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
1: जी
0: मुझे भी
1: जी
0: अच्छा लगता
1: हाँ, तो
0: है।
1: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
1: अच्छा अच्छा
0: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
1: हाँ
0: याग्निक
1: हाँ
0: का,
1: अच्छा,
0: मोह मोह के धागे,
1: मोमो के धागे, दम लगा कर है शायद इस फिल्म का
0: दम
1: गाना
0: लगा के
1: है
0: है
1: जी
0: उसका
1: जी
0: अलका
1: गीत,
0: पे।
1: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: हाँ,
1: हारमोनियम पे,
0: मोह
1: तो
0: मोह के है। और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: तरह
0: है,
1: से
0: ये
1: गाते थे
0: आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: या
0: क्या? आप
1: नकल नहीं किसी की,
0: नकल किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी गीता
0: हाँ,
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है
0: आशा जी का
1: उनके
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने
1: गाने।
0: अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता है।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी
1: हूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह
1: आजकल
0: रही
1: वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: हाँ
1: चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल,
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते
1: चौड़े
0: हैं,
1: में।
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, तो जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट।
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: जो
0: जी
1: वैरायटीज
0: हाँ
1: वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल ना नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं
0: खैर
1: अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं,
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ, हाँ
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र,
1: रामचंद्र,
0: तो मन्नादा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: हाँ
1: बड़ौदा में मन्नादा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
0: जी।
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी,
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी के आवाज़ में जाता होता है किसी के आवाज़ में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपने आवाज़ में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और
0: अच्छा,
1: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
0: ओहो
1: रियाज करके,
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला
0: हाँ
1: कि ज्यादा नहीं करना,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन तो कंप

0: गाते थे आवाज में बहुत ही अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी,
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: हाँ।
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में
1: जी जी,
0: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से बाम्बू चा वना झऱ्याच्या काठी येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी।
1: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत बहुत तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर करके लाइन में।
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें।
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी।
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द जिसे मॉड्यूलेशन फोर द की उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है।
1: जी जी जी।
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला। नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो क्या
1: वाह वाह। मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
0: जी जी जी।
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है।
0: हाँ।
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कम और क्लासिकल ज्यादा लगते हैं ऐसे उनके कई गाने।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे क्लासिकल गाने हैं ऐसी बात नहीं।
1: बहुत से भी
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज
1: जी,
0: में
1: जी, जी।
0: वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है मेरे प्यारे वतन।
1: वाह
0: बहुत अच्छे थोड़ा सुना था

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो भी एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी लिखावट।
0: संजीदा गाना,
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। इतने नम्र, और जितना आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूं, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूं, तो मैं और क्या करूं, और किसमें हाथ क्यों डालूं?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया, तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: जख्म
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की जी, थी जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो तो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
2: उस वक्त फोन बीन ये भी कुछ नहीं था।
1: हाँ,
2: तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो।
1: हाँ,
2: फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे।
1: हाँ,
2: तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है।
1: हाँ,
2: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: हाँ, हाँ,
2: वो मैं लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए।
1: हाँ।
2: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
1: जी।
2: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का
1: जी।
2: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
2: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोल्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको उन्होंने गाते
2: देखा,
1: देखा
2: तो उन्होंने
1: तो
2: वो भी गाती
1: वो आप...
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कैसा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
2: बड़ी बेटी एकदम हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
2: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि

0: परिवार के लिए एक गाना चुनी है, तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा,
1: हाँ,
0: ऐसा
1: हम लोग डुएट भी गाते थे
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलब चपलब उस पे डांस भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट दो गाने हम लोग ने, तो वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का पंख होती तो उड़ाती रे, हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरे ने लिया वो पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था मेरे शो में, बहुत लोगों को पसंद आता।
0: क्यों नहीं यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं?
1: अरे बाप रे,
0: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर एचआर पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
7: कहिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी।
7: कहिए ना,
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।

रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अभी आप सुन रहे थे लाखों दिलों की सुरीली धड़कन विविध भारती। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। इस समय स्टूडियो में शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं युवावाणी और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो मित्र आरजे बरखा कश्यप। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती के अवसर पर। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने ज्ञान, विनम्रता और दूरदर्शिता से देश को नई दिशा दी। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मॉडरेट नेता के रूप में जाना जाता है, जो अहिंसा, संवाद और सुधार के रास्ते पर विश्वास रखते थे। गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश की सेवा के लिए समर्पित नागरिक तैयार करना था। उनका मानना था कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज को सशक्त बना सकती है। वे महात्मा गांधी के गुरु भी माने जाते हैं। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि गोखले जी उनके राजनीतिक गुरु थे। ये दर्शाती है कि उनके विचार कितने प्रभावशाली और कितने प्रेरणादायक थे। आज के युवा उनके जीवन से ये सीख ले सकते हैं कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखती है। ईमानदारी, धैर्य और सेवा की भावना से ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम भी अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और एक जागरूक नागरिक बनेंगे।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना सावरिया मूवी का सोनम कपूर पर फिल्म आया ये प्यारा सा गीत। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये जिक्र क्यों किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन और प्रतिभाशाली अभिनेत्री सोनम कपूर के जन्मदिन की। इनका जन्म 9 मई 1985 को हुआ था। सोनम कपूर दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर की बेटी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सावरिया से की, इसलिए आपको पहला गाना मैंने सावरिया का सुनाया। शुरुआत भले ही साधारण रही हो, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से धीरे धीरे एक खास पहचान बनाई। उनकी कुछ चर्चित फिल्मों में निर्जा, रांझणा और खूबसूरत जैसी फिल्में शामिल हैं। खासकर फिल्म निर्जा में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सोनम कपूर सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक फैशन आइकॉन भी हैं। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल और आत्मविश्वास ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। दोस्तों, सोनम कपूर की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और अपनी पहचान बनाए रखना ही सफलता की असली कुंजी है। और लीजिए, अब एक और गीत की बारी है फिल्म दिल्ली 6 से।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: लीजिए सुनिए युवा प्रतिभा से भेंट क्रम में कक्षा 12वीं में गणित विषय में उच्चतम अंक प्राप्त टिया बागमारे से विनय श्रीवास्तव की ये खास बातचीत।
3: श्रोताओं, युवा प्रतिभा से भेंट क्रम हमारा जारी है और इस क्रम में हम लगातार आपसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे युवा प्रतिभाओं से जिन्होंने विगत दिनों कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं में की बोर्ड परीक्षाओं में उच्चतम अंक हासिल किए हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आप अपना परिचय दीजिए।
4: मेरा नाम टिया बागमारे है, मैं कक्षा 12वीं गणित संकाय की छात्रा हूँ। मेरी मम्मी का नाम ममता बागमारे है और मेरे पापा का नाम मधु प्रसाद बागमारे है। मेरे 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से 86% बने हैं।
3: चलिए, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी परिवार की ओर से कि आपने कक्षा 12वीं में 86% अंकों से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। टिया, पहला प्रश्न हम ये करना चाहेंगे, अमूमन हर श्रोता, हर जो जूनियर है आपका कक्षा 10वीं या 11वीं में जो पढ़ रहा है, वो जानना चाहता है कि कक्षा 12वीं में जो बच्चे उच्चतम अंक लाते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं, तो आपने किस

0: तरह से पढ़ाई की, कितने घंटे आपने पढ़ाई को दिए, कितने घंटे आप खेल में था, या किस तरह की आपकी रुचियां थी, किस तरह का आपका समय चक्र था, टाइम टेबल बनाकर पढ़े या किस तरह से आपने पढ़ाई की, बताइए।
1: यस सर, मतलब जैसे रूटीन बनाओ तो रूटीन तो फॉलो होता नहीं, लेकिन फिर भी 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए पर्याप्त रहते हैं। और थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए कुछ खेल भी सकते हैं, जैसे बैडमिंटन मेरे को खेलना पसंद है तो मैं बैडमिंटन खेल लेती थी खाली टाइम पे, और बाकी टाइम पे पढ़ाई करती थी, और मैं बस स्कूल जाती थी और कोचिंग बस, और सेल्फ स्टडी करती थी बस।
0: आपने अभी बताया कि एक रूटीन जो बनता है उसके हिसाब से कई बार पढ़ाई नहीं हो पाती, और आपने सेल्फ स्टडी की और कोचिंग भी की, तो सेल्फ स्टडी में कितने समय, कितने घंटे आप अपने पढ़ाई को देती थी?
1: वैसे तो स्कूल जाने में थोड़े घंटे लगते थे, और ट्यूशन के भी मतलब समय ज़्यादा बचता नहीं था वैसे, तो 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकलते थे बस।
0: 2-3 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के निकलते थे।
1: यस सर।
0: ये बताइए कि जब परीक्षा का समय आया तो उस समय आपने क्या रणनीति अपनाई, उसमें पढ़ाई के घंटों में वृद्धि की या फिर उतने ही 2-3 घंटे ही आप उस समय भी पढ़ती रहीं?
1: नहीं, पेपर टाइम पे तो मतलब वृद्धि करना था, मतलब 8 से 9 घंटे रोज पढ़ते थे।
0: तो 8 से 9 घंटे पेपर का जो जैसे ही टाइम टेबल आया उस समय, या आपको पता लगा कि अब फरवरी में एग्जाम है तो उसके पहले जनवरी से ही ये चीज आपने शुरू की?
1: जनवरी से ही की थी सर।
0: जनवरी से शुरू की।
1: यस सर।
0: ये बताइए, चूंकि आप गणित की विद्यार्थी हैं,
1: यस,
0: तो अमूमन मैं देखता हूँ, मेरा भी एक समय में गणित कमजोर विषय था, तो गणित आपका शुरू से ही मजबूत विषय रहा, अच्छा रहा?
1: यस सर, मेरा 10th से गणित फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने 11th में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही रखा।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका गणित विषय जो था प्रिय विषय था, और आपने कक्षा 11वीं में भी उसे ही चुना, और कक्षा 12वीं में परिणाम आपने उच्चतम अंक लाकर उसे साबित भी कर दिया। ये बताइए कि 3 विषय पढ़ने होते हैं, भौतिक है, गणित है और विज्ञान है, तो इसमें कौन सा विषय गणित के अलावा आपको ऐसा लगता था कि नहीं यार ये विषय थोड़ा सा मुझे कमजोर है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी?
1: केमिस्ट्री लगता था सर ऐसा विषय, लेकिन फिर पढ़ाई के साथ आ गया, लेकिन फिर पेपर थोड़ा सा टफ आया था तो उसमें ही सबसे कम अंक आए।
0: चलिए, यानी कि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन संभल गया आपका रिजल्ट, ओवरऑल जो रिजल्ट बना वो बहुत अच्छा बना।
1: सर मतलब उतने नंबर आए हैं, लेकिन हमारी उम्मीद थी उतने नंबर नहीं आए हैं केमिस्ट्री में।
0: यानी जितना आपने सोचा था उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक आपने स्कोर किया है। चलिए, ये हम जानना चाहेंगे कि आगे की क्या बातें हैं, क्या आपका योजनाएं हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे टिया कि आपके शौक क्या क्या हैं पढ़ाई के अलावा।
1: मेरी शौक में मतलब जैसे पेंटिंग कर लेती हूँ मैं कभी कभार, पेंटिंग मेरा फेवरेट हॉबी है, मैं मतलब बचपन से ही करते आई हूँ, 9th-10th से मैं करती थी पेंटिंग, और उसके साथ क्राफ्ट आर्टिंग का शौक है वो कर लेती हूँ।
0: पेंटिंग का शौक है, इसके अलावा चूंकि हम आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं तो हम जानना चाहेंगे कि गीत संगीत भी आप सुनना चाहती हैं, क्या पसंद है आपको, गीत संगीत सुनने का शौक है?
1: सर थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं, मतलब शौक, हाँ थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं।
0: रेडियो सुनती हैं?
1: कभी कभी सुन लेते हैं सर।
0: चलिए, तो आज हम रेडियो पर हैं और आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं, आपकी पसंद का यदि कोई गीत हो तो हम इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे।
1: यस सर, वो लता मंगेशकर का ए मेरे वतन के लोगों गीत, वो अच्छा है।

0: ये बताइए टिया जी की आगे की क्या योजना है। वह आपने कक्षा 12वीं तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली है, आगे क्या सोचा है आपने?
1: ये सर आगे वही है, मैथमेटिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसको लेके जेई मतलब जेडबल की तैयारी करेंगे और उसका एग्जाम क्लियर करेंगे।
0: तो JEE की तैयारी के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तो उसकी अभी से तैयारी शुरू है आपकी, या क्या सोचा है आपने कि आगे BSc परस्यू करेंगे या फिर एक साल ड्रॉप लेकर फिर तैयारी ही करेंगे JEE की?
1: जी सर, 1 साल ड्रॉप लेके JEE की तैयारी करेंगे।
0: तो आगे चल के कौन सी ब्रांच आप चुनना पसंद करेंगी इंजीनियरिंग की?
1: सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
0: सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहेंगी। चलिए आकाशवाणी परिवार की ओर से

0: आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो इच्छा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की वो पूरी हो। और हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं टिया, वो ये जानना चाहते हैं कि एक जो अच्छा स्कोर करता है टैलेंटेड बच्चा,
1: yes,
0: उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो वो इस मुकाम तक पहुंचता है, कौन कौन सी चीज़ों को उसे छोड़ना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी, किस तरह का उसका डेली लाइफ होता है, बताइए।
1: ये सर, लेकिन ऐसा तो मतलब कि हर कोई कर सकता है, मेहनत पे डिपेंड करता है बस। लेकिन मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है और एक बून भी है, वरदान भी है अपने लिए अगर अच्छे से उपयोग करा तो।
0: जी
1: ये सर, और डेली रूटीन में वो ये पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए अच्छे स्कोर करने के लिए।
0: तो ये है कि आप अपनी जो मोबाइल से दूरी बनाकर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आपका पढ़ाई पर हो। एक प्रश्न हम देखते हैं, चूँकि आपकी उम्र के बच्चे टेलीविज़न भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कार्टून नेटवर्क है या कोई अपना सीरियल है, कोई स्पोर्ट्स है, उसमें ज़्यादातर लगे होते हैं स्कूल से आने के बाद, या वो उसके बिना वो खाना भी नहीं खाते, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ है?
1: नो सर, ऐसा तो मतलब कोई आदत नहीं थी, ऐसी नहीं थी आदत।
0: तो बिना टीवी के भी आप चल जाता था?
1: यस सर, बस कभी मनोरंजन के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए टीवी देख लिया करते थे बस।
0: और मनोरंजन का कौन सा साधन आपका होता है पढ़ाई के अलावा, जब पढ़ाई से बोर हो जाते हैं थोड़ा सा, की का ऊब हो गई, अब थोड़ा सा मूड फ्रेश किया जाए, तो फिर क्या करती थी आप?
1: सर, थोड़ा सा बाहर टहलने निकल जाते हैं बस।
0: चलिए, आखिर में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने जूनियर्स को, हमारे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं युवा कक्षा 12वीं में अब प्रवेश पाएंगे 11वीं के बाद,
1: yes,
0: तो उनके लिए क्या संदेश होगा यदि वो हाई स्कोर करना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, आपका क्या संदेश होगा?
1: ये सर, संदेश यही है कि बस मेहनत करना है, और अगर मेहनत करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है हमारे सामने। कई बार ऐसे टाइम भी आता है जब अपन को लगता है कि अपन से नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपन को बस अपने अंदर भरोसा रखना है कि अपन से हो जाएगा, ऐसा कई बार फेस आता है सर। तो फिर बस यही है कि डिसिप्लिन में रहो और फोकस करो और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो बस।
0: चलिए, ये एक बात बहुत अच्छी आपने कही टिया कि डिसिप्लिन में रहें और एक कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं लगातार मेहनत करना, नियमित पढ़ाई करना, वो आप करते रहें तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। ये बात अक्सर आती है कि एक जो सफल व्यक्ति हो जाता है, अच्छे स्कोर कर लेता है, तो उससे अक्सर पूछते हैं कि भाई आपने किस तरह से तैयारियां की, क्या क्या विषय वस्तु की, तो जो टेक्स्ट बुक थी उसके अलावा भी आपने पढ़ाई की किसी और किताबों से, या फिर जो किताबें थी आपकी पाठ्यपुस्तकें उससे से ही आपने पढ़ाई की?
1: जी सर, जिनको कोचिंग में पढ़ाया जाता था वही पढ़ते थे, और अपनी टेक्स्ट बुक स्कूल की जो मिली थी,
0: स्कूल की जो टेक्स्ट बुक मिली थी। और विगत 4-5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उन्हें सॉल्व करना कितना जरूरी होता है, या क्या ये भी मायने रखते हैं?
1: यस सर, ये आखिरी टाइम पे जब पेपर अपने पास आ जाते हैं या फिर 1-2 महीने बचे रहते हैं, तो ये विगत वर्षों का पेपर लगाना बहुत जरूरी रहता है। उससे अपन को एक आइडिया हो जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, और अपन को पता चल जाता है कि अपनी तैयारी कितनी है।
0: आखिर में ये बताइए टिया जी, की एग्जाम की पर्टिकुलर परीक्षा की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कोई फियर दूर करने का कोई नुस्खा हमारे जो युवा श्रोता आपसे जूनियर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कक्षा 12वीं में जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या नुस्खा होगा, क्या टिप होगी आपके ओर से?
1: यस सर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब कितना ही पढ़ लो, लेकिन डर तो एक रहता ही है अपने अंदर कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन वो डर को अपने पर हावी नहीं होने देना है, बस अच्छे से अब रिविजन करना है और जाना है पेपर देने बस।
0: ये बताइए कि पढ़कर लिखकर याद करना ज्यादा उपयोगी होता है, या फिर हमने याद कर लिया और फिर सीधे परीक्षा में गए और लिख दिए?
1: ये सर, वो तो अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कैसे याद होता है, लिखकर याद होता है या फिर पढ़कर याद होता है। क्योंकि कई लोगों को पढ़कर याद हो जाता है, भूलते नहीं है लाइफ टाइम तक, और कई लोग को लिखते याद करते तब भी उनको याद नहीं होता।
0: टिया जी, आपने अपनी स्कूलिंग जो है कक्षा 12वीं किस स्कूल से उत्तीर्ण की है?
1: शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट।
0: शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट से
1: सर, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस,
0: एक्सेलेंस स्कूल से आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है।
1: यस सर,
0: और इस उपलब्धि के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये बताइए कि इस पूरी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी?
1: इस पूरी सफलता का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और मेरी दो बहनें, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, उनको देना चाहूँगी।

0: टिया जी, आप हमारे स्टूडियो आई और हमसे बातचीत की। आपकी सफलता पर और आपके उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं आकाशवाणी परिवार की ओर से। आपको बहुत बहुत बधाई स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद सर। अभी आपने सुना युवा प्रतिभा से भेंटवार्ता के अंतर्गत टिया बागमारे से विनय श्रीवास्तव की खास बातचीत, और अब बारी है इस प्यारे से गीत की।

संरक्षण और उनके महत्व के बारे में जागरूक करना है। प्रवासी पक्षी वे होते हैं जो मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तय करते हैं। ये पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं सिर्फ अपने भोजन, सुरक्षित आवास और अनुकूल वातावरण की तलाश में। लेकिन आज इन पक्षियों के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जल स्रोतों का खत्म होना। इन कारणों से उनके रास्ते और जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, प्रवासी पक्षी केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखते हैं। वे बीज फैलाने, कीट नियंत्रण और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। आज के युवा के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पक्षियों की रक्षा करें। हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना। आइए इस खास दिन पर हम ये संकल्प लें कि हम प्रकृति और इसके हर जीव जंतु की रक्षा करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर धरती का आनंद ले सके। और अब आप सुन रहे हैं थैंक यू फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना आई हेट लव स्टोरी फिल्म का गीत, और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में, जो हर साल मई और अक्टूबर के में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को प्रवासी पक्षियों के

तो दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त आरजे बरखा कश्यप को और स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रेया घोषाल, अन्वेषा और मीनाल जैन की आवाज में A.R. रहमान का संगीत है। फिल्म का नाम है रांझणा।

0: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म संजू से, आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।
1: प्राण प्रिय

0: समझ हैं? हाँ
1: बढ़िया।
2: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म कृष से, आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, राजेश रोशन का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।

गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का है स्वागत। आज आपके साथ हूं मैं, आपके रेडियो मित्र अमिता श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा ये विशेष अंक समर्पित है पार्श्व गायक, अभिनेता और संगीतकार तलत महमूद पर, जिनकी आज है पुण्यतिथि।

निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, 24 फरवरी सन 1924 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मे तलत महमूद अपनी कांपती और रेशमी आवाज के धनी थे। उन्हें शहंशाह ए गज़ल और गज़लों के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है।

0: अरे पर कहाँ?
1: वैनगंगा आईटीआई एडमिशन कराने।
0: वैनगंगा आईटीआई ही क्यों?
1: क्योंकि यहाँ की पढ़ाई कैंपस में नौकरी तो पक्की समझो।
0: अच्छा,
1: इतना ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ ऑल इंडिया टॉपर भी तो वैनगंगा आईटीआई से ही हैं। विशाल वर्कशॉप, प्रैक्टिकल नॉलेज और छात्रवृत्ति के लिए एक ही नाम, वैनगंगा आईटीआई।
0: प्रवेश प्रारंभ वैनगंगा आईटीआई गर्रा पालाघाट।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, तलत महमूद वर्ष 1939 में मात्र 16 वर्ष की आयु में ही अपने गायन करियर की शुरुआत की। इन्होंने अपना गायन करियर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के माध्यम से आरंभ किया।

श्रोताओं, तलत महमूद वर्ष 1944 में आए मुंबई अपने सपनों को पूरा करने। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 16 फिल्मों में अभिनय भी किया, जिसमें प्रसिद्ध फिल्में हैं राजलक्ष्मी, तुम और मैं, डाक बाबू, आराम, ठोकर, लाला रुख, दिवाली की रात, सोने की चिड़िया, रफ्तार आदि। इन फिल्मों में इनकी सहनायिकाएं रहीं काननबाला, सुरैया, नादिरा, शशिकला, माला सिन्हा, श्यामा और नूतन।

श्रोताओं, तलत महमूद को अभिनय का क्षेत्र पसंद नहीं आया। उन्होंने राह चुनी पार्श्व गायन की। वर्ष 1949 में अनिल विश्वास के गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल फिल्म आरजू से उन्हें मिली प्रसिद्धि। फिल्म बाबुल का गीत मिलते ही आंखें दिल हुआ हकीकत, होके मजबूर मुझे, एक गांव की कहानी, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, यास्मीन फिल्म का गीत बेचैन नज़र बेताब जिगर, जहां आ रहा

श्रोताओं, तलत महमूद ने फिल्म देख कबीरा रोया का गीत हमसे आया ना गया, मिर्ज़ा गालिब का दिले नादान तुझे हुआ क्या है, बारादरी फिल्म का गीत तस्वीर बनाता हूँ जैसे बेहतरीन और सदाबहार नगमे अमर कर दिए। तलत महमूद को सिनेमा और गज़ल के संगीत क्षेत्र में उनके कलात्मक योगदान के लिए वर्ष 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्रोताओं, 9 मई 1998 में अपनी विशिष्ट और रूहानी आवाज़ के पार्श्व गायक तलत महमूद ने इस संसार से विदा ली। ऐसे महान कलाकार को पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं ये सुमधुर दर्द भरा तराना।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये विशेष गुड इवनिंग बालाघाट का अंक अब संपन्न होता है। दीजिए अपने रेडियो मित्र अमिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं हरिहरन के गाए इस गीत से। गीत के बोल लिखे हैं मुशीर झुंझानवी ने और संगीत हरिहरन का।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:10 का वक्त होगा प्रादेशिक समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:21 पर। 7:30 का वक्त होगा कार्यक्रम किसान वाणी का। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:00 और 8:30 का वक्त होगा पॉप म्यूजिक का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा रात्रि 8:45 पर। 9:00 का वक्त होगा विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:30 पर विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का आप लीजिएगा आनंद। सदाबहार फिल्मी गीत ये कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये तो थी हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 होने ही वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर, सोमवार को सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर में आयोजित होगा रजत जयंती समारोह, मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे शामिल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: यह उत्सव सोमनाथ मंदिर की अमर विरासत को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। यह समारोह वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर को दर्शाता है। साथ ही यह 1951 में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। सदियों से सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों और शासकों ने इसे दोबारा बनाकर इसकी खोई हुई महिमा को वापस स्थापित किया। यह उत्सव इस महीने की 11 तारीख को मंदिर के शिखर पर होने वाले भव्य कुंभ अभिषेक के साथ समाप्त होगा। इस अनुष्ठान में 11 पवित्र तीर्थस्थलों से लाए गए जल का उपयोग किया जाएगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, निशिद प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही आज से सुशासन, सुरक्षा और विकास के एक नए युग का शुभारंभ हो गया है।
2: बंगाल सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है। भाजपा में प्रदेश का बनना, मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई।
0: सीहोर 2028 में श्रद्धालुओं की सुगमता से स्नान के लिए क्षिप्रा तट पर 29 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवीन घाट निर्माण किए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह ने आज करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में नदी के किनारे पैदल भ्रमण करते हुए घाट तक पहुंचने के प्रस्तावित 30 मार्गों का चिन्हांकन किया। संभागायुक्त आशीष सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन घाट तक बनने वाले पहुंच मार्ग सुगम और सुव्यवस्थित हों। संभाग आयुक्त ने बताया कि
3: आज के दिन हमारे और हमारी टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से निकलकर लगभग 6 किलोमीटर का एरिया जो है कवर किया गया है माशाल्लाह के किनारे किनारे। और आज के भ्रमण का उद्देश्य है कि जो हमारे 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, उन 29 किलोमीटर के घाटों तक श्रद्धालु किस किस पॉइंट से एंट्री लेंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को सहूलियत भी हो और सभी घाटों का अच्छा प्रयोग भी हो और हमारी जो रोड्स हैं जो घाटों तक लेके आ रही हैं वो आसानी से श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचा सके। लगभग 200 मीटर पर हम लोग
0: मना रहे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन

0: जब कल गुना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अडानी सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखेंगे। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पहला सीमेंट प्लांट होगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक विभागीय प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को लाभ वितरित किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। इस अवसर पर श्री चौहान मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। इन सड़कों की कुल लंबाई 2100 किलोमीटर से अधिक होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य की 987 बस्तियों को लाभ होगा। प्रदेश भर में आज आयोजित लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, भरण पोषण और वैवाहिक विवाद जैसे मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। भोपाल रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित लोक अदालत में बिजली बिल, जल कर और संपत्ति कर के सरचार्ज में 100% तक की छूट का लाभ दिया गया। प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को गति मिली है। इसी क्रम में मणिया ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत सागर जिले के राहतगढ़ विकासखंड के 131 ग्राम, जैसी नगर के 145 ग्राम, सागर ब्लॉक के 26 ग्राम तथा रायसेन जिले के बेगमगंज विकासखंड की 15 ग्रामों सहित कुल 317 ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुविधा से जोड़ा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भोपाल में आयोजित होने वाली अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय पुरुष एवं महिला टीमों की घोषणा कर दी गई है। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी भोपाल के कुल 10 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये सीरीज 15 मई से 20 मई तक खेली जाएगी, जिसमें देश और विदेश के युवा खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएंगे। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण कई इलाकों में आंधी और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने लोगों को तेज गर्मी व लू से बचाव हेतु सावधानी बरतने की सलाह दी है।
2: बढ़ती गर्मी के कारण लू एवं शरीर में पानी की मात्रा कम होना जैसे मरीज जिले के स्वास्थ्य संस्था में बढ़ रहे हैं। यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त, सरदर्द या पेशाब में जलन जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो ये लू अर्थात हीट स्ट्रोक होने की संभावना अधिक है। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को जिनको लू से खतरा अधिक है वो दोपहर में धूप में ना निकले, अधिक से अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे पदार्थों का सेवन करें।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। त्रिनिदाद और टोबेगो की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। खंडवा में जल संरक्षण और नदी संवर्धन को जन आंदोलन, कल आबना नदी तट पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया है। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांचें भी निःशुल्क की गईं। आगरमालवा में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 7:21 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को आपके अपने किसान रेडियो मित्र गेंदलाल कारे
1: और अजय बैस का नमस्कार। कारे जी आपको भी मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप?
0: देखिए अजय भाई कि अभी हम मौसम की बात करें तो धूप खिलती है, कभी मौसम अचानक से परिवर्तित हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे विगत दिनों हम देखते हैं कि जो बालाघाट में आंधी तूफान आए और इसमें बहुत सारे तो इससे बहुत सारा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अभी हम देख भी रहे थे कुछ समय पहले कि आंधी और तूफान आया हुआ है और आंधी तूफान के कारण कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अक्सर हम देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से दोपहर का जो तापमान होता है वो काफ़ी भारी, मतलब काफ़ी गर्म हुआ रहता है और शाम के समय थोड़ी सी ठंडक महसूस करते हैं, तो किसान भाइयों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का भी होता है क्योंकि हम देखते हैं कि अब रबी की फसल धीरे धीरे अब कहीं की कटने की अवस्था पर है और इस अवस्था में बाली निकली हुई है। यदि कहीं बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं वो मौसम का प्रभाव उस पर पड़ता है। बिल्कुल,
0: अभी ये जो 3 दिन पूरा जो बारिश हुई हवा तूफान है,
1: हाँ हाँ,
0: हमारे बहुत सारे किसान साथियों की जो फसल है पानी में गीली भी हो चुकी है।
1: बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि बिजली कड़कने के साथ मध्यम दर्जे का तूफान हमने देखा कि अभी जो जिला कृषि मौसम इकाई बालाघाट कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट द्वारा हमें प्राप्त हुआ, शाम के समय दक्षिण सिवनी में के साथ बालाघाट और सिवनी में इस तरीके की हवा की जो गति थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही है और तूफान मध्यम भी आया हुआ है। तो इस भाई इस अवसर पे इसके साथ हमारे किसान भाई प्रयास ये करेगी जो हमारी मौसम की जो सलाह होती है उसी आधार पे ही वो प्रयास करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए जैसे हम मानव जीवन तो कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार स्थान ले ही प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन जो हमारे पशुधन है वह निराश्रित होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, जिसके कारण उन पर कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ते रहता है। अजय भाई, हम अगर से बात करें तो गर्मी में जो हमारे पशुधन है उनको लू हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए उन्हें छायादार हवादार स्थान पर रखें और दिन में 3-4 बार ठंडा स्वच्छ पानी पिलाएं, हरे चारे के साथ साथ संतुलित आहार दें और दोपहर में तेज धूप से बचाकर उन्हें सुबह शाम ही चराएं। पशुओं को दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से नहलाएं और बाड़े में पंखे या कूलर की व्यवस्था करना चाहिए। अजय भाई, अब अगर से हम बात करें गर्मी पशुओं की देखभाल के प्रमुख उपाय, तो इनका जो आवास प्रबंधन होता है, पशुओं को सीधे धूप से बचाएं और छायादार शेड में रखें और टीन के छत हो तो ऊपर से पुआल जूट के बोरे डालकर उन्हें गीला रखें।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि गर्मी तेज जो तापमान का प्रभाव हमारे पशुओं पर भी पड़ रहा है और प्रयास ये करें कि दिन के समय पशुओं को बाहर न निकालने चरने के लिए भी और हमेशा पशुओं का ध्यान रखते समय रखें, सुबह के समय नहला दें और प्रयास करके शाम के समय भी नहला दें।
0: और अजय भाई, मैं एक कहना चाहूँगा कि अगर पानी की उपलब्धता है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी की टंकी को हमेशा छाया में रखें और साफ पानी उपलब्ध कराएं और आहार में बदलाव भी बहुत जरूरी है, सुबह शाम ठंडा पानी पिलाएं, चारे की नमी की मात्रा को बढ़ाएं। अजय भाई,

किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे सुमिरन लाल भगत और साथियों के स्वर में यह लोकगीत। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्रम कार्यक्रम किसानवाणी की ओर।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सभी डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: किसान साथियों नमस्कार, और आज के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ में गिनलाल कारे, और मेरे साथ में
10: मैं आपका रेडियो मित्र अजय बैस।
9: और अजय भाई, आज हमारा जो विषय है ई मार्केटिंग एवं कृषि बाजार का महत्व, और आज हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेंद्र रायज, और आप सहायक प्राध्यापक राजा भोज कृषि महाविद्यालय मुजड़ फार्म में आप पदस्थ हैं। राय सर, आपका हमारे इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, अब से लेकर रात्रि 8 बजे तक के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे जो फोन नंबर है इसे नोट करें। हमारा फोन नंबर 076632 या बालाघाट का कोड है, और 292173 यह हमारा फोन नंबर। अपनी समस्याओं या जानकारियों के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आज का विषय है ई मार्केटिंग एवं कृषि बाजार का महत्व। अजय भाई, जैसे कि हमारे किसी किसान साथी का अगर यदि फोन आता है तब तक हम सर से चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले
10: रोकना चाहूंगा कार्य जी, कि जैसे कि हमारा जो आज का विषय है ई मार्केटिंग और कृषि बाजार का महत्व। बाजार तो हम किसान भाइयों ने नाम सुना है, मंडी, वो मंडियों में जाते रहे, लेकिन जब से ई मार्केटिंग जो चल रहा है हम देख रहे हैं कि तब से कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी सरलता हो गई। और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर राय सर हमारे साथ में हैं, तो हमने इस विषय पर पहले भी काफ़ी सारी चर्चाएं की हैं अपने किसान साथियों पर, और कहीं ना कहीं अब हमारे किसान भाई ई मंडी से जुड़ भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब तक हमारे किसान भाई हमसे सीधा जुड़ रहे हैं, अब प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
9: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मंडी क्या होती है, ये ई मार्केटिंग क्या है, और इसका कृषि बाजार में क्या महत्व है?
11: सर, सबसे पहले तो मेरे श्रोता जो किसान भाई हैं उनको मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज का विषय है जो हमारे ई मार्केटिंग है, या हम उसको डिजिटल मंडी भी कहने लगे हैं, डिजिटल मंडी एक ऑनलाइन बाजार व्यवस्था है जहां हमारे किसान भाई जो है मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से जो खरीदार हैं उनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, वह अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी फसलों का विक्रय कर सकते हैं। इसमें होता है कि वो डायरेक्टली जब हमारे विक्रेता से जुड़ते हैं तो उनको अच्छे जो दाम हैं उनके फसलों के वो मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसमें क्या होता है, किसान भाइयों को अलग अलग जो मंडियां हैं हमारे पास की, उनके सभी के भाव उनको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, ताकि वो उसमें कंपेयर कर सकते हैं, जहां उन्हें अच्छा लगता है वहां के वो भाव को लेके वहां पे अपने फसलों का विक्रय कर सकते हैं।
9: यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो डिजिटल जो मंडी है, तो हमारे जो किसान साथी हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, चाहे बालाघाट की मंडी हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, या सिवनी जिले के, या मध्य प्रदेश के, या भारत की कहीं की भी जो मंडियां हैं, वहां पे उन फसलों के वो दाम देख सकते हैं, और जहां पे अगर सीधे उन्हें दाम अधिक मिल रहे हैं तो वहां अपनी फसल को विक्रय कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे किसानों को डिजिटल जो मंडी है

0: इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं?
1: देखिए, अभी तक हमारे जो किसान भाई हैं सभी कहते हैं हम उत्पादन बढ़ाने की ओर बड़ा ध्यान देते हैं, हमारे किसान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ जाता है, पर जो मुख्य समस्या आती है कि उनको उनकी फसलों का उचित जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और इसका मैं कहीं ना कहीं यदि कहना चाहूँ तो जो मुख्य कारण है हमारे किसान भाइयों को जो बाजार भाव है, किस जगह पर किस मंडी में क्या भाव है, उसकी जो जानकारी नहीं मिल पाती समय पर, और दूसरा जो बीच में जो हमारे बिचौलिए जिनको हम कहते हैं वो जो हमारे किसान भाइयों का प्रॉफिट लेके चले जाते हैं, तो इसके कारण हमारे किसान भाइयों को लाभ नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। तो डिजिटल मंडी जो है इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हमारे किसान भाई को सबसे पहले तो एक ही समय पे उनको जो सभी मंडियों के भाव मिल जाते हैं, दूसरा उन्हें पता चल जाता है। देखिए बहुत बारे किसान क्या होता है कि उसको भाव तो अच्छा मिल रहा है पर वो उस जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, तो किसान देख सकता है कि कहाँ का भाव उसके लिए उचित है जहाँ वो जा भी सकता है। दूसरा पारदर्शिता है, हमारे किसान भाई पारदर्शी रूप से क्योंकि सुरक्षित व्यवस्था है वहाँ से अपना फसल का भाव बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज़ एक है जो उनकी लाभ को बढ़ा सकती है, क्योंकि उत्पादन अकेला बढ़ाना लाभ नहीं बढ़ाएगा जब तक उनको उचित लाभ न मिले।
0: कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो ई मंडी के माध्यम से है जो हमारे किसान साथी है अपने ट्रांसपोर्टिंग खर्चे के उससे भी बच सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और उनका जो समय है आने जाने का उसकी भी बचत हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि क्या किसान मोबाइल से मंडी भाव तो देख सकते हैं, लेकिन क्या इसमें सभी प्रकार के फसलों का हमारे जो किसान साथी है वो मंडी भाव देख सकते हैं?
1: जी जी, सभी प्रकार की फसलों का, और हमारे यहाँ पे जितनी भी मंडी है, यदि किसान जैसे हम लोग पहले बात करते थे तो हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, जैसे ई नाम है, MP किसान है, डिजिटल मंडी है, ऐसे करके बहुत सारे हमारे पे एप्लीकेशन हैं, पोर्टल्स हैं जहाँ पे किसान लाभ फसलों की जानकारी ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसान बोलता है ये तो बहुत दूर है, यहाँ का मुझे भाव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे नज़दीक का चाहिए। तो हमारे पास अभी जो सुविधाएं हैं उसमें क्या, हम नियरेस्ट जो हमारे पास में है किसान भाइयों के, वो आसपास की मंडियों के भाव भी देख सकते हैं। जनरली ये जो सीमांत किसान और जो छोटे किसान होते हैं, बड़े किसान तो क्या है बड़ा दूर दिल्ली तक भेज देते हैं जहाँ उनको भाव मिल रहा है, पर हमारी जो मुख्य समस्याएं आती हैं वो छोटे किसानों के साथ,
0: छोटे सीमांत किसान,
1: उनको सारी फसलें जो वो उगा रहे हैं उस एरिया में उसका उनको लाभ मिल सकता है, जानकारी मिल सकती है।
2: लगता है कार्य जी किसान साथी हमसे सीधा जुड़ रहे थे लेकिन उनका फ़ोन कॉल्स कट गया हुआ है। जैसे सर अभी हम इनाम की बात कर रहे थे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो जो इनाम जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी हम सरकार का भी प्रयास रहा कि इस प्लेटफॉर्म का हमारे किसान भाई उपयोग करें, किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते?
1: देखिए जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे हमारे पास में एप्लीकेशन और पोर्टल्स उपलब्ध हैं, पर ई नाम के बारे में हम लोग इसलिए हम भी चाहते हैं और किसान जो हमारी सरकार चाहती है वो भी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इसका लाभ मिले, जानकारी पहुँचे, क्योंकि ई नाम जो है वो नेशनल लेवल पे हमारा राष्ट्रीयकृत जो मंडी है हमारी वो मंडी है, और इसका उद्देश्य इसीलिए किया गया था कि हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें। देखिए जब हमारे बाजार की हम बात करते हैं तो बाजार बढ़ता कब है, जब उसकी एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा जब होती है जब वो सारे लोगों को कांटेक्ट हो सकता है, एक दूसरे से हम जुड़ सकें, तो हम किसानों को जोड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय लेवल पे, इसलिए हम ई नाम के बारे में कहते हैं, जहाँ पे हमारे किसान को पूरे देश में जो भाव है, जो केता विक्रेता है,
2: बिल्कुल
1: उनकी जानकारी हो। और कई बार क्या होता है जब आप जानकारी लेते हैं तो फिर आप फसलों को उस हिसाब से उगाना चालू करते हैं कि यहाँ पे हमको इसका प्राइस मिल जाता है, यहाँ आसानी से बिक जाता है तो हम इसको लगा लेते हैं, तो ये चीज ई नाम का, और इसका उपयोग करना बहुत आसान है। किसी भी जैसे हमारे पास में प्ले स्टोर है, यदि हमारे किसान भाई थोड़ा जागरूक हैं, थोड़ा उपयोग करना जानते हैं, तो प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और ये वहाँ पे उनको आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर उनके जो है मोबाइल, और इंटरनेट की सुविधा उनको चाहिए, और बैंक का उनके पास में अकाउंट होना चाहिए, इससे वो अपना पंजीकृत करा सकते हैं। किसी भी किसान को जो मंडी के थ्रू अपना डिजिटल व्यवस्था, डिजिटल मंडी का उपयोग करना चाहता है, उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तभी उसका क्या है जो भी जानकारी है वो वेरीफाई हो पाएगी और हम इसको पारदर्शी रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।
0: अजय भाई, मैं हमारे किसान साथियों को आज का जो हमारा विषय है पुनः एक बार बताना चाहूँगा। किसान साथियों, आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम का जो हमारा विषय है ई मार्केटिंग एवं कृषि बाजार का महत्व, और किसान साथियों इस विषय से संबंधित हम रोकना चाहेंगे कि इस वक्त हमारे साथ में एक श्रोता साथी जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो
0: जी।

0: जी, मेरा सवाल ये है कि
1: सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहां से,
0: किसानों को कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी
1: जी,
0: इसके संबंध में कुछ जानकारी दें।
1: हम आपका नाम जानना चाहते हैं।
0: जी, मेरा नाम है रमा और मैं वारासिमनी से बोल रही हूँ।
1: जी जी जी, तो आपके समस्याओं का या आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर सुरेंद्र राय जी।
2: देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्या दस्तावेजों की जानकारी दी जानकारी होनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को। तो बहुत बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, केवल उन्हें उनके पास में बैंक अकाउंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी हमारे जो सबके पास में, हमारे किसान भाई सबके पास में हो चुका है, है ना। और थोड़ा एक डिजिटल जानकारी होना चाहिए कि कहाँ से उसको ऐप को डाउनलोड करना, इतना। यदि उनके वो नहीं जानते तो उनके घर में कोई ना कोई बच्चा होगा जो उनका है, वो कहीं ना कहीं आजकल बच्चों को आता है, और उनका आधार कार्ड होना चाहिए ताकि वो उसमें रजिस्टर्ड कर सकें। बस इतनी ही है, बहुत जटिल व्यवस्था नहीं है।
1: हाँ, तो रमा जी, आपके जो विचार थे या जो आप जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, आपके शंकाओं का समाधान हो चुका होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अजय भाई, मैं हमारे किसान साथियों को बता रहा था कि आज का जो हमारा विषय ई मार्केटिंग एवं कृषि बाजार एवं उसका महत्व, और इन विषय के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र राय, आप सहायक प्राध्यापक राजा भोज कृषि महाविद्यालय मुरझड़ फार्म में आप पदस्थ हैं। और किसान साथियों, इस संबंध से आपको किसी भी प्रकार से जानकारी आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे फ़ोन नंबर 076-32 या बालाघाट का एसटीडी कोड है और 292-173 हमारा यह फ़ोन नंबर है, तो हम आशा करते हैं कि आप अवश्य फोन लगाएंगे।
3: जैसे कि राज साहब से हम एक प्रश्न और जानना चाहेंगे। हम देखते हैं सर कि पहले हम देखते थे कि अभी एक शब्द आया था बिचौलिया, हमारे किसान भाई हम देखते हैं कि जो जहाँ क्रेता बाजार में उनका एक विश्वास बना हुआ होता है, लेकिन जब वो ये मार्केटिंग के थ्रू वो अपनी फसलों को बेचते हैं तो कहीं ना कहीं भुगतान को लेकर भी उनमें उनके मन में काफ़ी रहता है, क्योंकि नए लोग होते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है, भुगतान कैसे होता है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन भुगतान होता है, लेकिन किस तरीके से भुगतान की प्रक्रिया होती है?
2: देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल का जो हमारा दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के सामने कई बार फ्रॉड हो जाता है, और आजकल तो इस ज़माने में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में एक शंका होती है। पर क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा अधिकृत है, और मैंने कहा कि आपको आधार कार्ड, आपका बैंक होना चाहिए, तो पारदर्शिता की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप अपनी फसल का क्रय या विक्रय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट होगा वो डायरेक्टली किसान के अकाउंट में होता
3: जी,
2: है
3: जी।
2: तो ये पूरी तरह से पारदर्शी है और सुरक्षित है, क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है पूरा सरकार के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉड होने की जो संभावना है वो नगण्य है
1: जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या है, और आजकल कुछ फ्रॉड टाइप के भी बहुत सारे हमारे किसान साथी इसका शिकार हो चुके हैं या और आम जनमानस। तो जैसे कि सर ने बताया कि आधार कार्ड और
3: इसी साथ एक किसान साथी हमसे सीधा जुड़ रहे हैं। हेलो, स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में।
4: जी, मैं करियादन हट्टा बालाघाट से गुलाम कटरे बोल रहा
1: हूँ। जी जी, आप हमारे नियमित श्रोता है कटरे जी, आप थोड़ा, आपकी आवाज कम आ रही है।
4: जी जी, कार्य जी नमस्कार आपको, और मैं आपको भी नमस्कार।
3: जी जी, आपको भी नमस्कार,
4: आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार,
4: मैं ये कहना चाह रहा था
1: जी जी,
4: जो डिजिटल मार्केटिंग है
1: जी,
4: में कोई भी फसल को देखने के बाद भी व्यापारी खरीदता है।
3: यहाँ बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि लगता है आपसे हेलो
1: शायद संपर्क टूट चुका है, फिर भी रेडियो के माध्यम से हमारे कटरे जी
3: राय साहब, उनका प्रश्न ये था कि जब क्रेता होता है फसलों को देखता है, लेकिन ई मार्केटिंग में वो फसलों को देखकर ही जो मूल्य तय करता है, तो किस तरीके से थोड़ा प्रक्रिया होती है?
2: देखिए, जब डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं तो हर एक जो फसल है उसका जो प्राइस मंडी पे है वो डिस्प्ले होता है, यदि आपने देखा होगा तो हमको उस मंडी का भाव जो है वो फसल का उस मंडी पे वो डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें जो हमने कहा कि कम और ज़्यादा हमारा जो हो रहा है प्राइस का, है ना, तो वो जब आप उससे मुलाकात करते हैं तो आपको एक नियर अबाउट जो प्राइस है आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे है और मेरा क्वालिटी का ये जो प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। आप वो सैम्पलिंग तो सही बात है कि, पर आपको एक जो जनरल आइडिया लगता है। कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई सामान लेके चले जाते हैं मंडी में, पता चलता है कि वहाँ पे वो भाव उनको नहीं मिल रहा है।

0: जो उन्हें बेचना है और फिर वो अपना पूरा सामान लेके वापस आते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि यदि आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है और इतनी आपकी उम्मीद है जो वहाँ पे डिस्प्ले में है तो आप अपना प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। फिर वहाँ पे जो मोल भाव है वो तो निश्चित तौर पे जो खरीदार है वो क्वालिटी देख के, पर ये एश्योरेंस हमारे किसान भाई खुद अपने उससे कर सकते हैं कि जो उनका प्रोडक्ट है जो उनका फसल है उसका भाव उनको अनुमानित रूप से कितना मिलना चाहिए और वो किस मंडी में मिल रहा है,
1: मतलब क्रेता के उम्मीदों के
0: अनुसार यदि है तो वो उस मंडी पे जा सकते हैं। तो परिवहन का जो शुल्क है जो अननेसेसरी उनको परेशानी होती है उससे बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न था कटरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम देख रहे हैं कि आजकल डिजिटल तो काफ़ी फ्रॉड भी होता है, लेकिन अब तो डिजिटल मंडी कहें कि काफ़ी हम सुरक्षित मान रहे हैं और मूल्य भाव भी हमने देखा था कि भाव का अंतर था पहले, भाव अंतर एक सरकार
2: योजना चल
1: तो हाँ, तो कहीं ना कहीं इसको दूर करने के साथ साथ अब इसमें सुधार हुआ है। तो किस तरीके से सर अब हम इसे देखते हैं, अब किसानों के लिए उपयोगी हो रहा है?
0: देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है, हम एक समय में जब बात करते थे कि हमको फसलों का उत्पादन में वृद्धि करनी है, हमने बहुत सारी वैरायटियां, बहुत सारी तकनीकों का प्रचार भी किया और निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई उनका उपयोग करते भी हैं, पर जो मुख्य बात आती है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण उसने टमाटर की फसल को छोड़ दिया या उसको ट्रैक्टर से उसने जोत दिया पूरा, क्योंकि उसको उचित भाव नहीं मिल रहा था। अब जब आप मार्केट में जाते हैं एज अ कंज्यूमर तो आपको क्या होता है, भाव बहुत ज़्यादा मिल लगता है। तो लगता है कि ये जो बीच का गैप है, हमारे किसान को भाव क्यों नहीं मिल रहा है जबकि हम जो उपभोक्ता हैं उतना भाव तो दे रहे हैं। ये जो बीच का अंतर है इसको पाटने के लिए एक ही है कि जब हमारा जो किसान है वो डायरेक्टली उपभोक्ता या जो उसको खरीदार है उससे जुड़ेगा, हम मिडिलमैन को जितना कम करेंगे हमारा किसान को उतना लाभ मिल पाएगा।
2: कुल मिला के उत्पादन और उपभोक्ता के बीच
0: की जो कड़ी है उसको हमको छोटा करना है, डायरेक्टली उनको पहुंचाना है ताकि हमारा किसान भाई मैक्सिमम लाभ ले सके जितना उसकी फसल के लिए उसको, ताकि ये देखिए कहीं कहीं हम लोग सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, मतलब किसान को उसका उत्पादन का लाभ नहीं मिल रहा है तो सरकार उसको सपोर्ट करती है। यदि उसको उचित भाव मिलने लगे, उपभोक्ता से वो जुड़ जाए, बीच के मीडिएटर को कम कर सकते, ये जो डिजिटल मंडी है कहीं ना कहीं उसी कंसेप्ट को पूरा करने की एक कोशिश है।
1: बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सरकार का एक प्रयास है। कार्य सर अब आप कुछ प्रश्न करना चाहेंगे?
2: तो सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत सारे जो किसान साथी या जो हमारे पूर्वज जो लगातार कृषि करते आ रहे हैं, खैर अभी तो शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हो गया और इसमें बहुत अग्रणी भी हुआ है, लेकिन जो हमारे दादा वगैरह जो थे आज वो इस डिजिटल
1: प्लेटफार्म
2: का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बनती
0: हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, आज हम भली डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे सभी किसानों के हाथ में मोबाइल फोन है,
1: बिल्कुल,
0: पर फिर भी बहुत सारे किसान भाई जो तकनीकी रूप से उसका उपयोग नहीं करना चाहते, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए भी सुविधा है जो CSC सेंटर हमारा होता है जहाँ पे कॉमन सेंटर है वहाँ पर जाके वो पंजीयन करा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे जो कियोस्क सेंटर होते हैं वहाँ जा सकते हैं, मंडी जा सकते हैं, वो वहां मंडी में जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो किसान भाई नहीं जान रहे हैं उपयोग करना वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, वहां पे जाके पंजीयन करा सकते हैं और उसके बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं, फसल की जानकारी का लाभ ले सकते हैं।
2: कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जैसे कि अजय भाई हमारा जो बालाघाट जिला है धान उत्पादक जिला है और जिस समय हमारे किसान साथी धान का जिस प्रकार से पंजीयन कराते हैं, चाहे वो सोसाइटी के माध्यम से कराते हो या अन्य CSA के माध्यम से कराते हैं।
1: जी हमने देखा कि पहले जब मंडी में जाते थे तो वहाँ बोली लगती थी, अब क्या ई प्लेटफॉर्म में भी ऐसी जो है, हम अभी चर्चा भी कर रहे थे तो ये भी होता है बोली या बीट जो है?
2: अजय भाई इस समय हम आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ में एक हमारे किसान साथी जुड़े। हेलो जी, आप अपना नाम?
3: मैं मदन लाल किसान बोल रहा था सर, ग्राम सिकंदरा से।
2: बिल्कुल बोलिए बिसेन जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
3: जी सर नमस्कार। सर
2: नमस्कार जी,
1: बिसेन जी हम जानना चाहेंगे कि अभी मौसम कैसा है आपके क्षेत्र का?
3: मौसम सर अभी तो बूंदाबांदी हुआ था आज।
1: तूफान भी आया क्या अभी?
3: हवा हुआ चली सर,
1: तूफान वगैरह आया शाम के समय?
3: तूफान आया सर, थोड़ा बहुत आया सर।
1: तो ये फायदा है या नुकसान है आपके लिए?
3: ये तो अभी नुकसान है सर, अभी सभी क्या है, बहुत नुकसान है सर।

0: किसानी के काम के कारण थोड़ा नुकसान कर रहा है शरीर।
1: जी जी अच्छा। तो आज क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप?
0: सर ये मेरा प्रश्न है सर, मैंने नींबू का पेड़ लगाया था घर पे, मैं क्या फल नहीं आ रहे हैं सर?
2: अच्छा
1: विशन जी, ये क्या है, हमारा जो आज का आपका प्रश्न तो ठीक है लेकिन विषय से थोड़ा हटकर है, लेकिन कुछ समसामयिक सलाह हमारे डॉक्टर राय साहब।
2: देखिए कई बार क्या होता है, लाइम की यदि जो हमारा है चूने की जो हम कहते हैं ना, यदि उसकी कमी हो जाती है ना, तो ये जो हमारे सिट्रस जो खट्टे फल हैं नींबू हैं, इनमें फल नहीं आते हैं। आप कई बार फूल लगते हैं, झड़ जाते हैं, कई बार आते ही नहीं हैं। तो आप एक बार कोशिश करिए कि चूने को थोड़ा सा उसमें अप्लाई करके, उपयोग करके देखें, उसका गोल बना के थोड़ा सा मिट्टी के किनारे उसको डाल के देखेंगे, तो उससे भी कई बार होता है कि जो नींबू में फल नहीं लगते हैं, तो उससे समस्या को दूर किया जा सकता है।
1: और कोई प्रश्न आज के विषय से संबंधित विशेष जी?
0: सर मैं और एक जानना चाह रहा था सर, ये खेत में क्या है हमारे ज्यादा कर वो दात्या हो रहा है सर, फसल कम हो रही है, दाते ही ज्यादा।
3: मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपने रबी में धान की फसल लगाए हैं
0: जी?
3: अच्छा, और दातिया उसमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है?
0: वो दातिया ज्यादा आ रहा है।
3: दातिया भी उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक डुफा वाला होता है और एक सिंगल डंडी वाला होता है, कौन सा वाला ज्यादा?
0: सर वो एक मूंछी वाला है, वो दातिया वो ज्यादा परेशान कर रहा है।
3: बिसेन जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस समय में हम धान की जो नर्सरी डालते हैं, जैसे अभी रबी सीजन की जो धान कटेगी, फिर उसके बाद में खरीफ सीजन की आप जो नर्सरी डालेंगे, तो उस समय में ज़मीन को एक सर दो सर उसकी बढ़िया जुताई कर दे, बढ़िया मलमली कर दे, और उसमें जो अंकुर नाशक दवा आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है, हम किसी कंपनी का नाम तो नहीं लेंगे, तो उसको वहाँ पे डाल दीजिए और ऊपर से पानी चला दीजिएगा, या पहले पानी चला दीजिएगा जिस स्थान में आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसके चारों ओर मेड़ बना दीजिएगा और उसको डब्बा डब्बा भर दीजिएगा, और उसके बाद में वो अंकुरनाशक दवा का छिड़काव करेंगे, तो इसमें काफ़ी हद तक ये जो है इससे आपको समाधान मिल पाएगा। ठीक है बिसेन जी?
1: बिसेन जी ने प्रश्नों का जवाब इन्हें मिल गया होगा। सर हम देखते हैं कि जो ई मंडी है इसमें काफ़ी सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि हम चुनौतियों का उसका समाधान करने के लिए ही हम प्रयास करते हैं, तो कुछ ऐसी चुनौतियां अक्सर हमारे सामने आती हैं।
2: देखिए बिल्कुल, हम आज हमारे देश की बात करें तो जब हम किसानों की बात करते हैं तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा वर्ग जो किसानों का है वो सीमांत और छोटे किसानों का है, और आज हम जागरूकता की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो है, आने वाले सब जो पीढ़ी है उनके पास तो शिक्षित हैं, लेकिन पुराने जो हमारे किसान भाई हैं आज जो वो जुड़े हुए हैं वो उनके पास में शिक्षा का अभाव है, और तकनीकी रूप से यदि हम मोबाइल का उपयोग कहें तो जो कर रहे हैं वो केवल फ़ोन को लेने और उठाने और रखने में।
3: बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ चर्चा करने के बाद।
2: हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा जो उनको जानकारी का अभाव है, तो कृषि विज्ञान केंद्र और जो कृषि विभाग है संयुक्त रूप से, और कई बार अलग अलग भी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि ऐसी जो सुविधाएं उनका उपयोग कैसे करें, तो ऐसे किसान भाइयों को मेरा आग्रह है कि वहां पर जाके ट्रेनिंग का लाभ लें, और ताकि वो कुछ जागरूकता जो डिजिटल जागरूकता है वो ग्रहण कर पाए, तो वो जो परेशानी महसूस कर रहे हैं उपयोग करने में वो उतना महसूस नहीं करेंगे।
1: और हम देखते भी हैं राय सर कि अब जो नया यूथ है वो हाईटेक,
2: जी जी बिल्कुल,
1: और क्योंकि ये कृषि यंत्रों के साथ टोटल, चाहे बीज बोने से लेकर बीज काटने तक,
2: आप मानिए सर कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो बाहर की फसलों को बुला के, एग्जॉटिक जिसको हम फसल कहते हैं वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि आज ये डिजिटल मंडी के कारण ही फसलों को बेचने का एक परेशानी जो पहले थी, मैं आपको बताऊंगा हमारे जो रिश्तेदार थे उनने हल्दी लगाई, बोले लगा तो ली, अब इसको बेचे कहाँ, किसको बेचे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं लेता, कोई उगाता नहीं है, तो नई फसलें कोई नहीं करना चाहता था, पर आज क्या है कि आप एक ऐसे समुदाय के साथ में जुड़ चुके हैं डिजिटली रूप से, जहां पर आपके लिए खरीदार उपलब्ध है, दूरी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, पर उपलब्ध नहीं होगा खरीदार, ये समस्या खत्म हो चुकी है।
3: यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं अजय भाई कि अपन उत्पादन तो कर सकते हैं लेकिन उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उनको
1: डिमांड भी है आजकल।
2: हाँ, पहले नहीं थी पर अब हो गया है, क्योंकि अब लोग जुड़ चुके हैं, खरीदार सामने बैठा हुआ है, आप उनकी जो डिमांड है उसके अनुसार फसल लगा सकते हैं।
1: डिमांड काफ़ी यह है। सर हम देखेंगे कि अभी हमारे पास वक्त है, किसानों के लिए किस तरीके से जो आगे, जो क्योंकि अब आगे आने वाला जो

0: में है, हम देख रहे हैं कि हाईटेक एग्री किस तरीके से आगे हम भविष्य की परिकल्पना हम करें कि किस तरीके उपयोगी रहेगा।
1: देखिए भविष्य की यदि हम बात करें तो हम तो अभी जैसे हमने लोकल मार्केट की बात करी, हम छोटे सीमांत किसानों की बात करें, पर हम जब कृषि को एक नए युग में देखते हैं, आधुनिक युग में देखते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे जो युवा किसान हैं जैसे हमने बात करी कि एग्जॉटिक फसलों का उपयोग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है, और इंटरनेशनली यदि आपको बेचना है तो आप उसको कॉन्टेक्ट करने का आपके पास में एक ही जो माध्यम वो है डिजिटल मंडी, ये आपको इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करती है।

0: जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है, और इंटरनेशनली यदि आपको बेचना है तो आप उसको कांटेक्ट करने का आपके पास में एक ही जो माध्यम वो है डिजिटल मंडी। ये आपको इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करती है जहां पर आपको फसलों के बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं। और कृषि जो एक समय पे केवल जीवन यापिका का पर्याय बना हुआ था वो कहीं ना कहीं पे एक आय का स्रोत बन सकता है, उद्यमिता का स्रोत बन सकता है। पर हमारे युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, इन सारी चीजों का उपयोग करना पड़ेगा जो सुविधाएं के लिए क्रिएट की गई हैं, बनाई गई हैं, तब जाके निश्चित तौर पे कृषि जो है वो लाभ का धंधा बन पाएगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते तो हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं किसान जो खेती है वो एक सेकंड विकल्प के रूप में है। प्राथमिक रूप से कोई जो हमारे युवा हैं वो खेती नहीं करना चाहते, वो सब चाहते हैं कि भाई यदि कुछ नहीं हुआ तो हम खेती करेंगे,
1: लास्ट ऑप्शन।
2: इसका एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे आज डिजिटल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, जिसमें कि बाजार भाव भी मिल सकता, लेकिन इसके पहले जो हमारी पारंपरिक जो खेती थी, जैसे हम बालाघाट जिले की बात करें तो यहाँ पर धान ही धान, सिवनी जिले में गेहूं और मक्का ही मक्का होता था, इसके कारण भी जो अपने को फसलों के जो दाम है वो नहीं मिल पाते थे। जैसे भी हमारे जो कुछ किसान साथी व्यवसायिक खेती करते हैं, जैसे इस वक्त अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान साथियों ने कहना चाहिए कि सुरंद की खेती की है, मशरूम का उत्पादन भी किया, लेकिन मशरूम का उत्पादन करने वाले को यही मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण वो हताश भी,
0: देखिए मार्केट उपलब्ध नहीं हो पाया, वही वाली बात है,
2: वही वाली बात है,
0: उपयोग नहीं पाए। मार्केट उपलब्ध है, खरीदार उपलब्ध है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे उगा रहे हैं, जो हमारे उत्पादक किसान है और जो उपभोक्ता है, उनके बीच में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। यदि ये कनेक्शन खत्म हो जाए, जो कनेक्शन हो जाए, ये परेशानी दूर हो जाए, तो उपभोक्ता भी यहाँ पे, आप देखेंगे कि हमारे पे हम लोग चिन्नौर उगाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा भाव था, लोगों ने उगाया, पर उनके पास में खरीदार नहीं पहुंच पाए। दूसरा आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे सिवनी जिले के जो किसान भाई सुन रहे होंगे, सिवनी जिले में हम लोग वो लगाते थे अपना जीरा शंकर, जीरा शंकर वो उगाते हैं, खरीदार को मिलता नहीं, तो उसमें क्या आपने सुना होगा मिक्सिंग होती है, तो हमारे जो खरीदार उनको मिक्स मिल रहा है, मिक्स मिल रहा है मतलब खरीदार हैं पर उन तक जो पहुंच नहीं पा रहा उत्पाद, यदि पहुंच जाएगा तो मिक्स करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कि बीच का मीडिएटर यदि खत्म हो जाए तो उनको लाभ मिलेगा। तो ये सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डिजिटल मंडी ही एक
1: राज सर, अब अभी हमारे पास वक्त है 2 मिनट का, अंत में हम मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान चाहे अब हमारा खरीफ का समय आ रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से, अपने यूथ से?
0: देखिए मैं किसान भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी फसल आप लगाना चाहते हैं निश्चित तौर पे आप वो फसल लगाइए, कोई परेशानी नहीं है कहीं पर भी, हमारे जो उनको मार्केट की दिक्कत है वो दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए जो उनको बनाई गई व्यवस्था है उसका उपयोग करना पड़ेगा, तभी वो उसका लाभ ले पाएंगे। और मार्केट में जिस भी चीज़ की डिमांड है, जिस भी फसल, जिस भी वैरायटी, जैसे हमने चिन्नौर की बात करी थी, वो धान लगाना चाहते हैं धान लगाइए, पर चिन्नौर लगाइए, चिन्नौर लगाइए तो साथ में डिजिटल मंडी से जुड़ के उसके उपभोक्ता तक भी जाइए, ताकि आपको उसका समुचित लाभ मिल सके।
2: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र राय जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान साथियों को ई मार्केटिंग एवं कृषि बाजार का महत्व इसके बारे में बहुत अच्छी सारगर्भित जानकारी दी। और अजय भाई, आज के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में हमें जो तकनीकी सहयोग मिला आर्यल कटरे, अंकित चाकोले का, प्रस्तुति थी धीरज कुमार की, और किसान साथियों इसी के साथ स्वीकार करें हमारे किसान रेडियो मित्र गिरनलाल कारे
1: और अपने रेडियो मित्र अजय बैस के साथ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर राय साहब का, तो स्वीकार करें, नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: एक फोटो ले लो।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में श्री 420 फिल्म का गीत। संगीत शंकर जयकिशन का था और गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म काला बाजार से।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म काला बाजार का गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म नागिन से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण के बोल और हेमंत कुमार का संगीत।

दिल्ली का ठग। आइए सुनते हैं इस फिल्म में आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। संगीत है रवि का और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

कश्मीर की कली। आइए सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत। ओपी नैयर का संगीत है और SH बिहारी की रचना।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म जिद्दी से। एसडी बर्मन का संगीत है हसरत जयपुरी के बोल, आवाज़ लता मंगेशकर की।

लव मैरिज। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र का गीत।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉप म्यूजिक।

इसके फाल्गुनी पाठक के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का पॉप म्यूजिक का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 8:45 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: वरिष्ठ अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है। समाचार

0: संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था।

सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने

0: ईशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his

0: दीवार थी,
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
0: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम

ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाईं। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

मलक महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया। फिल्म छाया के लिए आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार कर

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। सदियों से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं।

वो एक मुख्तसर सी मुलाकात, कुछ नाजुक से जज्बात छलके थे उनकी आंखों में, आते आते कुछ ठहर सा गया था उनके लबों पर। एक छलक देख लिया था कभी आपको, वो कसक दिल से आज तक न गई। काश काश वो एक और मुलाकात का वादा तो करते। देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, देख तो कोई है तेरा मुंतजिर कब से, अब तो सूरत दिखा हिजाब न कर।

मोहब्बतों में नुमाइश की जरूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी भी गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह गई जो दिल में वो बात न पूछिए। इकरार मोहब्बत की अदा तो देखिए हुजूर, जुल्फें जब वो मेरे चेहरे पर बिखरा देती है, बड़ी सादगी से फिर वो मुस्कुरा देती है।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जमा होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी, जुबां हैं जवां मोहब्बत की,

फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए। मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं, गुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

वो दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह। उफ, ये लहराते गेसू, ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया,

0: महकते गीतों के साथ आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, किया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
6: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया, और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला तराना फिल्म पाकीज़ा से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, कैफ भोपाली के कलाम और गुलाम मोहब्बत का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जाल से, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने। इस गीत के गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस डी परमन।

अनाड़ी। आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर को। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म तलाश से। एसडी बर्मन का संगीत है और मजरू सुल्तानपुरी के बोल।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आवारा से। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे नवरंग फिल्म में लता मंगेशकर और सी रामचंद्र को। इसी के साथ हमारा आज का सदाबहार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from 2 assembly constituencies, will have to vacate 1 seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party